0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीने फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पूरे बा अख्तियार इदारो ऑटोस मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम मोटरसाइकिल तमाम शात ऑटो ले थी मोटरसाइकिल जी का भैकू एडजस्टमेंट RPMG एन जरिए कई 0320-18-00-003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 आई 0242-460100

0: 83 47 47।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: यार पांचो वठी आया से धमाके
3: आचर सुबह जो 11 बजे का।

सेवनजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ासि, मोरो, मेरापुर, मटियारी, सकरन ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया रोशन सुबुह ऐं मां जो मेज़बान नेमत अलाह जुणे जो। साईं मुंहिंजा सियाणा चवंदा आहिनि त बुख न पुछे बोड़, निंड न पुछे हंधु। निंड लाइ चवंदा आहिनि त मौत जी भेण आहे, कुझु बि आहे पर मुनासिब निंड बि अलाह ताला जी बेशुमार नेमतनि मां हिकु अनमोल नेमत आहे। निंड सिहत लाइ एतिरी त ज़रूरी आहे जेतिरो खाधो ज़रूरी आहे। ॾिठो वियो आहे त हिकिड़ा माण्हू सुम्हण सां ई निंड जे वादीअ में हलिया वेंदा आहिनि, पर किन लाइ निंड रुठियल हूंदी आहे। पर सर्वे मुताबिक़ एशिया खंड जे माण्हुनि में निंड घटिजी वई आहे। चवनि था त मगरबी दुनिया में बल्ब जी ईजाद निंड जी कमीअ जो सबबु आहे, ऐं असांजी दुनिया में वरी सिहत ऐं समाज जा मसइला निंड जे न अचण या घटि अचण जो सबबु आहिनि। निंड रुसण सां ॼण सिहत बि रुसी वेंदी आहे ऐं ॾींहं जो कमकार करण वारी सलाहियत बि मुतासिर थींदी आहे। अव्हां खे निंड पूरी अचे थी, तव्हां ख़ुशि नसीब आहियो, पर जेकॾहिं अव्हां खे निंड नथी अचे त पोइ बि हुन जो को बिलो कयो, न त वरी पोइ हीउ कलाम ॿुधो त फरज़ाना परवीन छा पई चवे।

0: साईं मुंहिंजा
1: प्यारो ऐं पंहिंजा बि हुजे अहिड़ो प्यार जंहिंमें को आज़ार न पर अर्पनाऊं आथतूं ऐं सहारा हुजनि, जिन में साथ सुगंध इक़रार ऐं वाइदा वचन हुजनि। इंसान खे पंहिंजे मुख़्तसिर हयाति में अगरि प्यार जो सहारो मिली वञे थो त सदन जीवन झंझालण खां आजो ऐं आज़ादु थी वञे थो। ऐं साईं मुंहिंजा कंहिं ॾाहे चयो आहे त हीअ ज़िंदगी मुहबतनि लाइ तमामु थोरड़ी आहे, पर उन में माण्हू नफ़रतनि लाइ वक़्तु अलाए किथां था आणनि। ऐं साईं मुंहिंजा अलाए शुरतनि जा कंडा पोखे समाज जा पेर पिथूं करे छॾींदा आहिनि, पर कंहिं जुस्तजू में मगन मंज़िल जा मतलाशी ऐं अॾोल इंसान पथरनि ऐं कंडनि सां विछयल राहुनि ते बि मंज़िलनि जो सफ़र तय रखंदा आहिनि। पर असां वांगुरु इहो अर्ज़ु कंदासीं त तव्हां इहो बि सफ़र कयो जेको अव्हां नियाणियुनि ॾांहुं वञो, जेके अव्हां जे राहुनि जो इंतज़ारु कंदियूं आहिनि। ऐं नियाणी हमेशह थकींदी आहे उन दर ॾे त मुंहिंजा पंहिंजा कॾहिं था अचनि। ऐं साईं मुंहिंजा इहो हुकुम बि आहे त पंहिंजे नियाणियुनि ॾे वञो, पंहिंजे वस आहार पंहिंजे वज़न आहार तव्हां हुन जी ख़िदमत बि कयो ऐं तव्हां हुन खे ख़र्चियूं बि ॾियो। ऐं हूअं बि जॾहिं कंहिं नियाणीअ खे ख़र्ची मिलंदी आहे, पोइ चाहे बंगलनि में रहंदड़ हुजे, चाहे हुन जे घरनि में वॾियूं गाॾियूं छो न हुजनि, पर जेको हुन खे पंहिंजे पेकनि मां हुनखे ख़र्ची मिलंदी आहे, उनखे पई सांडींदी, उहा थोरी हूंदी आहे, तमामु रुपियनि में हूंदी आहे, सवनि में हूंदी आहे या हज़ारनि में हूंदी आहे, पर उहा नियाणी उन ख़र्चीअ खे पई लिकाईंदी त मूंखे हीअ पंहिंजनि अबाणनि ख़र्ची ॾिनी आहे, हीअ ख़र्ची मूंखे पंहिंजनि पेकनि ॾिनी आहे, ऐं हीअ लटा कपिड़ा मूंखे पंहिंजनि ॾिना आहिनि। पर नियाणीअ खे पंहिंजे वक़्त जे हिसाब सां वठण बि ज़रूरु वेंदा कयो। जेकॾहिं नियाणी हुन जे लाइ ईद हुजे, मौसम कहिड़ी बि हुजे, ऐं जेकॾहिं उहा नियाणी बंगलनि में रहंदी आहे, एसियुनि में रहंदी आहे, पर जॾहिं पंहिंजे ॻोठु ईंदी, पंहिंजे पेके ईंदी, उते भले गर्मी छो न हुजे, मच्छर छो न हुजनि, पर उन जे लाइ उन बंगलनि खां उहे पेका वधीक हूंदा आहिनि, उहे अबाणा कख वधीक हूंदा आहिनि। सो कोशिशि कयो पंहिंजे नियाणियुनि ॾे चकर बि ज़रूरु लॻायो, पर पंहिंजे नियाणियुनि खे पंहिंजे घर ॾांहुं वठी बि ज़रूरु अचो।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वक़्त हिन वक़्त असां हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो।

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003858569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: लिशार्ड।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आए, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
4: चेयरमैन

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह वहां बुध पाया जी एफ एम 88 के नेटवर्क तमाम जो मेज़बान नेमत अला जुड़े जो साई मुझा चवंदा आहिनि त जंहिं वक़्तु विञायो उन कुझु बि न पायो ऐं ईअं बि चवंदा आहिनि त वक़्त खे गुज़ारियो न त वक़्तु अव्हां खे गुज़ारे छॾींदो पाण वक़्त खे मापे त सघूं था उन जो काथो बि करे सघूं था मसलनि वॾड़ा चवंदा त हिकु वेल 2.5 सेकंडनि जी बराबरि ऐं हिकु पल 24 सेकंडनि जे बराबरि हिकु पहर 3 कलाकनि जे बराबरि ईअं राति ॾींहं हफ़्ता महीना साल ऐं सदियूं इहो वक़्त जो मापो ऐं अंदाज़ो आहे ऐं इहो हर को करे सघे थो पर साईं मुंहिंजा वक़्त खे रोके को बि नथो सघे चवनि था त असां 24 कलाकनि में 21,000 भेरनि खां वधीक साह खणूं था पर पोइ बि एतिरनि साहनि मां हिकु साह ते बि भरोसो कोन्हे असांखे ज़िंदगीअ जे हर पल पहर जो क़दुरु करे उनखे पंहिंजो सुठो करणो आहे ऐं उनखे सकराइतो करणो आहे ऐं उनखे बहितर बणाइणो आहे ॻाल्हि आहे वक़्त जी।

साईं मुंहिंजा हिन वक़्तु पाण ॻाल्हि कंदासीं दोस्तीअ जी। हज़रत अली करम लाइ वजन खां कंहिं पुछियो त साईं भाउ ऐं दोस्त में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। साईं फरमायो त दोस्त हीरो आहे ऐं भाउ सोन हूंदो आहे। उन माण्हूअ ॿीहर पुछा कई त क़िबला हीरे ऐं सोन में वरी कहिड़ो फ़र्क़ु आहे। हज़रत अली साईं फरमायो त सोन टुटंदो आहे त ॿीहर ॻंढिजी सघंदो आहे, पर हीरो टुटंदो आहे त ॿीहर जुड़ी न सघंदो। उन करे साईं मुंहिंजा ॻाल्हि आहे दोस्तीअ जी त दोस्तीअ जे रिश्ते जो एहतराम कंदा कयो, छो त चवंदा आहिनि त हिकु किताबु ॾहनि दोस्तनि जे बराबरि हूंदो आहे, पर हिकु सचो दोस्त सॼी लाइब्रेरी जे बराबरि हूंदो आहे। उन लाइ इहा बि आहे त चवंदा आहिनि त अच त दुनिया खे विरहायूं, अच त दुनिया खे विरहायूं, समुंड तुंहिंजो वीरूं मुंहिंजूं, अर्श तुंहिंजो तारा मुंहिंजा, सिज तुंहिंजो रोशनी मुंहिंजी, बाग तुंहिंजो गुल मुंहिंजा, जिस्म तुंहिंजो रूह मुंहिंजो, चङो हीअं था कयूं त सभु कुझु तुंहिंजो ऐं तूं मुंहिंजो।

0: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ईणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी ईणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
0: मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
5: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
6: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अर्ब जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 0242460100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। मुंहिंजो मेज़बान नेमत अला जूणे जो साईं मुंहिंजा लफ़्ज़नि जो वज़न कॾहिं गरो थिए थो त कॾहिं वरी लफ़्ज़नि जो वज़न न हुजण जे बराबरि हूंदो आहे। उन्हनि लफ़्ज़नि जो असरु इंसान ते गहिरो थिए थो। लफ़्ज़ चाहे इंसान जी ज़बान मां निकिरे या वरी कलम जे नोक सां सर्जनि, उन्हनि जो हुसन पंहिंजो थींदो आहे। अहसासनि ऐं जज़्बनि जे इज़हार लाइ लफ़्ज़नि जो सहारो वठिणो पवे थो। लफ़्ज़ त सदियुनि खां वठी साॻिया ई आहिनि, मफ़हूम बि साॻियो अथनि ऐं वरी माना बि साॻी। बस रुगो फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे त लफ़्ज़नि जी सुहिणी अदायगीअ जो, छाकाणि त लफ़्ज़नि जी सुहिणी अदायगीअ सां लफ़्ज़नि जो मफ़हूम सुहिणो जुड़ंदो आहे ऐं उन जी माना अञा वधीक असराइती जुड़ंदी आहे। ऐं इहा सुहिणी अदायगी हूंदी आहे जेका हिकु माण्हूअ खे ॿियनि माण्हुनि जे दिलनि में दादिलो बणाईंदी आहे ऐं जेका हर दिलि में जॻह ठाहींदी आहे। पर माण्हुनि खे वहम अजायो हूंदो आहे, थोरो सब्रु कंदो ऐं माण्हू पाण खे रोकींदो, क़ाबू में कंदो, वहम न कंदो त मंज़िल आसान थींदी।

जी असीं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां दोस्तनि जा नाला अवां खे इंतज़ारु ओसियड़ो पंहिंजे नालनि ॿुधण जो दोस्तनि लोहर कॉलोनी खां इमदाद बरदायो जवाद हुसैन ऐं नंढड़ो यासिर हुसैन दायो अज़ीज़ सोलंगी भुटो सोलंगी नूरो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीर हज़ार खान डावश सुमेर अली डावश आफ़्ताब खुश्क दादू खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया फतेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बेबी शुगफ्ता अनाज कनासरो ॻोठ सिराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां ॻोठ मोलिन माशी लग बकापुर खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार सोलंगी ज़हीर अब्बास ऐं नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां ऐं रिहाना खान बखर खां रमेश कुमार खत्री कृष्ण लाल खत्री ज़फ़र शेख कराची खां हाजी सोराब मंगरियो ॻोठ सचरिनो मंगरियो लॻे बकापुर खां क़ुर्बान अली ख़ासखेली झंडो मरी खां ऐं इनायत ख़ासखेली बि झंडो मरी खां ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां माशूक अली जूणी जो ॻोठ चन्हड़ नसीराबाद खां

जी हाँ, समय न मुमताज़ मोलाई ऐं गुलाबो जी आवाज़ में जेको मां सराइकी गीत ॿुधो पिया। इन ई ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची वियो पंहिंजे पुॼाणी ते। हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

सऊदी अरब में हुसैन जे हमले पोयां ईरान आए हुसैन ईरानी जा एजेंट ए प्राक्सी आन अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस जी मीडिया सा गाल बोल जे डी वेंस चयो त सऊदी अरब ते हुसी हमला अफसोसनाक आन एड़न हमलन में ईरान जे किरदार के नजरअंदाज नथो करे सके अमरीका ए सऊदी अरब जा मजबूत दिफाई अस्करी लगा पाए।

लीटर अघ में तकरीबन 8 रुपया वाध। अजोके ॾींहं में पेट्रोल 5 रुपया 58 पैसा ऐं डीज़ल 4 रुपया 35 पैसा महांगो थी वियो। पेट्रोल जो फी लीटर नओं अघु 364 रुपया 35 पैसा ऐं डीज़ल जे 385 रुपया 95 पैसा फी लीटर मुक़ररु।

सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में शहीद सहाफी नसर केस में गिरफ्तार जवाबदार असगर लुंडई जमानत वारी दरख्वास्त रद्द करे छी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जी ब रुकनी बेंच जस्टिस फैसल कमाल ए जस्टिस तस्नीम सुल्ताना महफूज कल फैसलो बुधायो। कतल केस में बरकत लुंड असगर लुंड सरदार खान लुंड संदस बिन पुटन समेत छह जवाबदार नामजद कई वो।

0: ऐं कोटड़ीअ में मालगाड़ीअ जा टे गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अप ट्रेन ते गाॾियुनि जी अच वञ मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरिसां कराची खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ मालगाॾीअ टे गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अपग्रेड मुअतल थियण सबब मालगाॾीअ खे डाउन ट्रेक ते गुज़ारियो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: असली चीजां चारों मसालों की सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद। जी जान चारों मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109-03000-3105-109।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
5: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03000-3204-372 आई 02-4246-0100।
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा।
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस سم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 0301-399-2836
11: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीजे खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
0: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: करना जी कोशिश कंदर अठ दहशतगर्द मारिया वाया वाशिक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग की डेवट दौरान टन दहशतगर्दन के जन्म भेड़ो कयो वयो ऑपरेशन दौरान मारजी वाले दहशतगर्दन वटा बारूदी हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वयो सदर वजीर आजम वफाक वजीर पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सेस के भेटा पेश दहशतगर्दी के मुकमल खात्मे वारे अज़म जो भी वर्जा

0: कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बैरी जहाजन के अमेरिका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स हमले जूं वीडियोस भी जारी करे छडियूं। सेंटकॉम मूजिब ईरानी आयल टैंकर्स खिलाफ़ कार्रवाई पासदारन इनकलाब पारां अमरीकी बेड़न खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशुनि बाद कई वई। अमरीकी परडेही वज़ीर मार्क रूबियो भी चयो आहे त तेहरान अमरीकी बैरी बेड़न खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा आयल टैंकर तबाह कया वेंदा। आयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी हदफन ते जवाबी वार उर्दन में अमरीकी अडन के निशानो बणाए वो। आबने ओरंस में भी डह का वधीक बेड़न के निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फौज उर्दन के शहर अल रिज़क में कायम अमरीकी अडे के निशानो बणायो। अमरीकी बैरिया के बिन के भी निशानो बणाए वो। पाजर इनकलाब चयो त उर्दन में अमरीकी अडे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाजन के भी वो नुकसान पहुतो। उर्दन पारा ईरानी मिजाइल हमलन की भी तस्दीक कई वही। वजीर आजम की सदारत हेठ फिनांस प्लान 2026-28 बाबत इजलास पांजो घर स्कीम ज़रात एसएमएस में तरक्की लाइ फिनांसिंग जो जायजो वरतो वो। शहबाज शरीफ हारन के मालियाती वसीलन तई रसाई बिना रंडक यकीनी बनाने की हिदायत कंदे चयो त घट आमदनी वारन के सस्ता घर फराहम करण पहिरीं तरजीह आहे। हुकूमत सां पेट्रोल जे अघनि में घटिताई बाबति संजीदा ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। कुझु तजवीज़ूं बि हुकूमत आॾो रखियूं आहिनि। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त धरणनि दौरान हुकूमत मामले ते असां बि अपोज़िशन सां राबता कया आहिनि। पेट्रोल सस्तो थियणु घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-310-5109, 03000-310-5109।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, आई बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
5: السلام علیکم ادا.
6: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
5: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا؟
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
5: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836.
9: محمد عمر گوری 0319 1557724.
10: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
11: ایٹ سکس نائن انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد.

0: मेरी
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जी बिल्कुल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से बिल्कुल दिया के सिद्रा के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे अपने होने का एहसास दिलाइए जनाब आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं शामले प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे सब कुछ बताएंगे सब कुछ बताएंगे लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है सबसे पहले ये बता देते हैं तो बिल्कुल जी अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात करी जाए तो आज मेरा आप लोगों से जो सवाल होने वाला है ना वो बिल्कुल ये होने वाला है कि वैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें अगर फ्यूचर दिखाया जाए या फिर हमें अगर फ्यूचर में जाना पड़े तो हम अपने लिए ये चीज देखेंगे कि हमने अपने फ्यूचर में जाकर क्या किया है कई मरतबा ये वाला सीन हो जाता है कि हम फ्यूचर में जाकर ना खुद को देख नहीं सकते ये चीज वैसे इसके ऊपर काम चल रहा है कि हाँ भाई लोग फ्यूचर में जाकर देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है या फिर वो फ्यूचर में जाकर क्या कर सकते हैं लेकिन आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह होगा कि आपने मुझे बताना है फर्ज कर लेंगे अगर आप लोगों को एक आधा घंटा मिल जाएगा भाई आप अपने फ्यूचर में जाएं और आपको आधा घंटा मिल जाएगा फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखें कि आप फ्यूचर में जाकर क्या कर रहे हैं आप क्या बन चुके हैं आपने क्या किया है अगर आधा घंटा जाकर आप देख सकते तो आप अपने लिए क्या जाके देखते हाँ जी हमें ये लगता है कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम जाकर देखना चाहेंगे कि हम अपने आगे जाकर फ्यूचर में हमने क्या किया है कौन सा हम काम कर रहे हैं क्या जॉब कर रहे हैं पढ़ाई की नहीं की ये चीज वो चीज तो इस तरह आप मुझे बताएं कि अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में जाकर अपने लिए आधा घंटा देखने के लिए कि भाई आप फ्यूचर में जाएं और आप आधा घंटा अपना फ्यूचर जो है ना वो देकर आए तो आप क्या देखना पसंद करेंगे फ्यूचर में जाकर उसके लिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है बिल्कुल ही तो जिए लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आप जब आएंगे तो वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जैसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे हाँ जी ऐसा वाला सीन है कि आप लोगों के पैनल के मैसेजेस सामने प्रोग्राम किए जाते हैं और जो लाड़काना वाली पोस्ट है ना उसके ऊपर आप आकर कमेंट कीजिए तो आपके कमेंट सामने प्रोग्राम रखे जाएंगे ठीक है अदरवाइज बाकी जो नूरियाबाद की पोस्ट के ऊपर मौजूद है तो उनसे भी गुजारिश करूंगी कि भाई आप आकर लाड़काना के पेज के ऊपर हमें ज्वाइन कीजिए बाकी जो नूरियाबाद वाले लिसनर्स हैं कल तो मुझे लग रहा था कि कोई भी नूरियाबाद का बंदा मुझे नजर नहीं आया था प्रोग्राम के अंदर आज देखेंगे कि आज शामले प्रोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और आप ही बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर पहले से कर रहे हैं ओके जी सो ये तरीके कार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के और जल्दी से टॉपिक को फॉलो कीजिए अपने होने का एहसास दिलाते जाइए और साथ ही साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए तो जल्दी से आपको जो नंबर बता रही हूँ ना उसके ऊपर रब्ता कीजिए रब्ता करने के फौरन बाद ही ये हो जाता है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं पहुंची है वो ये चाहते कि भाई हम भी लगाना चाहते हम भी इस्तेमाल करना चाहते असा कड़ो डो कयो सी भला तो बिल्कुल तहां डो नाए कयो तहां बस इन नंबर ते राबतो करे वठो ऐ नंबर ते जडी तमा राबतो करे वठना ना पो जल्दी तमा जे करीबी जनरल स्टोर्स ते अवेलेबल कराई वेंदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐ नंबर आही जनाब जल्दी नोट करे वठो 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 जी असि पोस्ट के लाइक एंड शेयर क्या तो बबा इन यो फर्क पवन है पोस्ट है ना वह खोड़ सारे मान पोची वी है खोड़ सारे मानन के असो बुधाए बबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम भी लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जहा के सारा फायदा सब कुछ बुधाया थे पर इतने ज्वाइन किया है फरवा गुल के असलम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस टेक केयर हाय आप ही आप कैसी हैं मैं ठीक हूं जी आप बताएं कैसी हैं बरकत रमदानी जमाली बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जाफराबाद बलोचिस्तान से भाईजान को वेलकम कहते हैं अखलाक बलोच हमारे साथ मौजूद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम हेलो अच्छा फहीम शेख कहते हैं सलाम अलैहिस्सलाम मदद वालेकुम अस्सलाम कहते हैं अदा चाहला सफा चाक स्लेट कलम शो तो सफा भलो आ प्ले अच्छा ठीक है था गानों लिखो है गानों हलायूं था और फरवा कहती है आप ही पोइट्री है कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए गेरों से क्या गिला जब अपने बदल गए आईली और कहती है गाने की रिक्वेस्ट है मैं कोशिश क्या थी बिल्कुल तांज लाए गानों हलाइना सी और हमारे साथी जी अखलाक भाई कहते हैं कि डी स्किन कमाल की क्रीम है हाँ जी बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत सारे फायदे हैं और यहाँ पर स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट आयो आ रिली विशाई रिली थे हलड़े चलो चलो ताकि चौथा भली करे आया और गुलाम फरीद बलोच कहते हैं जिंदगी से नजर मिलाओ कभी हार के बाद मुस्कुराओ कभी तरके उल्फत के बाद उम्मीद वफा रेत पर चल सके है अन्नाओ कभी अब जफा के सराहते बेकार बात से फिर सका है घाव कभी शाख से मोझे गुल थमी है क्यों हाथ से रुक सका बहाओ कभी अंधे जहनों से सोचने वालों हरफ में रोशनी मिलाओ कभी बारिशें क्या जमीन के दुख बांटे आंसुओं से बुझा लाओ कभी अपनी स्पेन की खबर रखना कश्तियां तो मगर चलाओ कभी गुलाम फरीद जागीरानी क्या बातें आते साथ इतनी लंबी शायरी भेज दी ढा करके मार दी अच्छा उनके अलावा फहीम भाई कहते हैं दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजवाब आए बिल्कुल जी जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया हुए बिल्कुल यही चवन पाया एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी इस्तेमाल करना चाहो था तो जल्दी जल्दी पाने गरीबी जनरल स्टोर से भजंदा वनो उतना वी मोटी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करें बुधाए मुख्य तो तमाम भी इस्तेमाल किया है अच्छा वकास अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली सलाम अदर प्लीज प्ले मास्टर मंजूर अच्छी डे आथत उदास दिल के डेडिकेट टू मीर मुर्तजा अच्छा मैं कोशिश क्या थी तुम सभी जी गाने जो फरमाइशों हलाइंदी और चाचा खाली जुड़ी जो हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं चाचा आपको भी मैं ठीक हूँ आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है कहते हैं बेटा सिद्रा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम भी लगाना चाहते हैं असा बिल्कुल तव वो नी तवे कें चलो है तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सो था बाबा एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करा जो नंबर तक बुधा उन नंबर से राबो करी वो टॉपिक के जरा ऐसी वो टॉपिक में तवा पुछो है अगर बाबा इंसान के चांस मिलो है ना खैर इंसान के खोड़ सारा चांस मिला है पर इंसान जो ना पाँच हथन से काफ़ी सारी चीजों विनाए छो है वो एक पहा को हथन से विनाए वे पेरेंट्स में गोलिंदा ये हरकत न क्या कर अगर तुम भी चाहो था बाबा तो तुम खूबसूरत थो तो बिल्कुल तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे खूबसूरत थी सको था टाइम भी थो है तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ हलो वने वनी वरी पर जल्दी मोटी मींदम तुम दिलजाए न कर दिलजाए कर बाबा दिल न लाओ आई जल्दी जल्दी मोटी चूं था एक नंढा सफा कमर्शियल ब्रेक है ओ हिं वनी ओ हिं मोटू था सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए
0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ही थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-83

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें की जा रही है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा सा आप लोगों को बताते हैं, जरा सा क्या बल्कि थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सा आपको बताते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपके जहनों में ये चीजें तो होनी ही चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, बस दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है या फिर वो अगर देखते हैं कि भाई फला इंसान को इस प्रोडक्ट से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम लगाएंगे तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी और के ऊपर अच्छा वर्क कर रहा है तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती कि वो आपकी स्किन के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो उसकी स्किन के ऊपर कर रहा है, क्योंकि हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग अलग होती है। अगर आप अपनी स्किन टाइप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि हमारी स्किन टाइप क्या है, तो आप थोड़ा सा जो है ना वो हर एक प्रोडक्ट जो है ना उसे अवॉइड किया करें। ऐसा नहीं कि बस कोई भी प्रोडक्ट बता दिया उसके ऊपर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसा किया करें, पहले जान लीजिए, समझ लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और ऑल स्किन टाइप के लिए क्यों है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला होने की वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, और ये जो चीजें होती ना जैसे वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर पाई जा रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो भाई क्या बात है, आपकी स्किन को ऐसे चमका देगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली। वैसे कहते हैं ना जो अच्छा आप महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब आप देखते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन जब बहुत महंगे महंगे फेशियल करा के आती हैं और फेशियल कराने के बाद जो उनके चेहरे पर ऐसे आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा वाला निखार आ चुका है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि आपको इस तरह का निखार देती है कि जैसे आपने फेशियल किया हुआ हो। ये एक नाइट क्रीम है जैसे आपका टाइम भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं और आपको बहुत से भी बहुत अच्छा वाला निखार भी मिल जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, ये बात हो बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर देना ये जो होता है ना ये चीज हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाती। और ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर आपको रिजल्ट ना मिले। इतना अच्छा इतना कमाल का आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि आजकल हर कोई चाहता है ना कि जैसे भाई उनकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, बेदाग हो, गोरी हो। लेकिन उसके लिए ये भी हो जाता है कि भाई आप समझ नहीं पाते कि हमने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और ये हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। तो बिल्कुल जी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रोजमर्रा स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे आप रात को सोने जाए तो कुछ ही जो पल होते हैं ऐसा होता है कि भाई मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के पास चलें, अगर आपके पास दिन में कोई भी टाइम नहीं है तो शाम में रात में आप थोड़ा जो ना 4 से 5 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। 4 से 5 मिनट मुझे लगता है कि ये इनफ टाइम होता है अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करने के लिए और एक ब्यूटीफुल सी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करने के लिए। ये 4 से 5 मिनट बहुत काफी होंगे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपके पास इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप खवातीन है, मर्द हजरात हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अपनी स्किन को जरा पहचानिए, उसे क्या चाहिए। आपकी स्किन को जैसे आपकी बॉडी को खाने पीने की जरूरत होती है वैसे ही आपकी स्किन को भी भाई प्रोडक्ट की और अच्छे प्रोडक्ट की नीड होती है। तो बिल्कुल वैसे ही अपनी स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई बिल्कुल सेफ है और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज की जा रही है। जनाब
आप इस्तेमाल करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं कहीं पर मिल रहा है, वैसे हर जगह पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, चले जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से, वहां से मालूमात लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर नहीं, क्योंकि अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां पर रहते हैं वहीं पर आपके लिए ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल जी, चाहे आप हमें सखर से सुन रहे हैं, मोरो से, मिरपुर खास से, मटियारी से, सखरण से, मेहरापुर से, या फिर 92 नूरियाबाद से, या फिर लाड़काना की समाते हैं, तो हर जगह आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएं और वहां से नाम लेकर तलब करें, तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए। खूबसूरती को जरा पहचानिए, आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी वो वाली खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। ओके जी, मर्द हज़रात, ख़वातीन, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी से हमें भी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानते हैं और पहले से इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई आप अच्छे से जानते, पहले भी 3 महीने प्रोग्राम करके जा चुकी हूं मैं दोबारा से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके जी, सो जल्दी से मेरे साथ शेयर किया करें, वैसे भी कहती हूं शेयरिंग इज केयरिंग होती है, और फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, कंजूसियां किस बात की। और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए आपको ऐसा मतलब चांस मिल जाए फ्यूचर में जाने का, आपको मौका मिल रहा हो, सिर्फ आधे घंटे के लिए आप अपने फ्यूचर में जाएं और देखें कि भाई आपकी क्या हालत है, आपके हालात अच्छे हो चुके हैं या बुरे हो चुके हैं, तो आप जाकर देखेंगे फ्यूचर में, आप मुझे बताएं जब आप अपने फ्यूचर में जाएं तो अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये मैं फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखना चाहूंगा या देखना चाहूंगी, जल्दी से मुझे बताइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाइए। ओके जी, आपके लिए गाने लगाते हैं बहुत अच्छी अच्छी जो हमारी लिस्ट में मौजूद है, और आप लोगों से बातें करते हैं, आपके मैसेजेस जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं, चाहे वो कॉमेंट्स हो चाहे वो पैनल पर हो, तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जान भी आते हैं। आपका हमारे साथ 3 बजे तक का होगा, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

हमारे साथ यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, तबीयत ठीक ठाक है और बाकी सारे लोग ठीक है? अच्छा, सब लोगों से पूछ रहे हैं, सही है जी, कहते हैं आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी। और फहीम भाई लिखते हैं कि मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे अख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश से, वही दर्द मेरी हयात है। वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा, किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक, अगर मुझे फ्यूचर में वञण जो मौको मिले तो आऊं सब खां पहिरीं ही ॾिसां हां त तू अञा घणा दफ़ा दर बंदि कंदी। बाबा, ये असांजे अस में त ॻाल्हि हूंदी न आहे न, असां पाण हिकिड़ा छा चवां हाणे, नौकर माण्हू आहियूं, नौकरी कंदा आहियूं, सो असां समुझी सघो था।

सूरत हाल होने वाली है तो मुझे अच्छा खासा आप सब लोगों से रिस्पांस मिलना चाहिए। और ये भी आप बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप कब इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये जो इतनी तारीफें कर रही है बिला वजह नहीं कर रही हूँ, इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको मिलने वाले हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे। तो नूरियाबाद हो, कश्मीर हो, कराची हो, कहीं पर भी आप चले जाएं, वहां पर आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए। तो बस जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अवेलेबल कराते रहिए।

0: ओके जी, गुलशेर बाबर एंड मुजम्मिल बाबर हमारे साथ है विलेज अल्लावरायो बाबर से। भाईजान को वेलकम कहा जाता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ है। और हमारे साथ है भाऊ, हमने भी आपका नाम सुना है यहाँ कराची में, जगह जगह आपके मत करे, इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़नी थी। इधर सिद्रा बॉस लिखा पड़ा है, मजा कर रहा हूँ भाऊ। हाँ जी, मुझे पता चल गया था। और वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। कहते हैं चापिक भाऊ, मैं ये देखूंगा कि बच्चे कितने हुए हैं मुझे, और कुछ कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं, सही है। वैसे तो हमारी
1: मुबारक
0: ये भी वैसे अच्छी बात देखेंगे बच्चे कितने हुए हैं, सही है जी। और हाँ बिल्कुल, ख्याल रखा करिए, अच्छी बात है। और वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करिए, अच्छी बात होगी। हमारे प्यारे जयपाल भाई कहते हैं कि मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है जो पहनकर उतारा नहीं जाता। जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे, तांची गाल खा एगरी आई हूँ ऐसा। हाँ जी, गुल खणी भी हो पर गॾु गॾु डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी खणी बीहो, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि हाणे तव्हां सभिनी खे ॾस ॾियो बाबा, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वेंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सवा मुनासिब क़ीमतनि में तव्हांखे मिली रही आहे। वञो बाबा, थोरो पाण ते ख़र्च कयो, ईअं न कयो सवा पाण खे छॾे ॾींदा आहियो तव्हां। ईअं न कयो, पंहिंजो ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो, छो त तव्हां पाण ख़ूबसूरत हूंदा, तव्हांजी स्किन ब्यूटीफुल हूंदी, त तव्हांखे हर चीज़ सुठी लॻंदी आहे। अगरि हिकिड़ो बि एक्नी अची वेंदो आहे न फेस ते, मतिलब मां पंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि थी ॿुधायांव, हिकिड़ो बि अगरि एक्नी अची वेंदो आहे न त मतिलब मूंखे लॻंदो आहे बाबा हाणे इहो एक्नी हेॾा ॾींहं हलंदो, इहो थींदो हूअं थींदो। एक्नी बि अगरि तव्हांजे चहिरे ते हुजनि न, उहे बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी वजह सां ख़तम थी वेंदा आहिनि। सो हिकिड़ो बि एक्नी अगरि तव्हांजे चहिरे ते अची वेंदो त तव्हां डिस्टर्ब थी वेंदा आहियो। सो बिल्कुल इन चीज खे सफ़ा बाय बाय करे छॾियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। हीउ मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, तव्हांजी स्किन खे सफ़ा ईअं सफ़ा चिकनो बणाए छॾींदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था।

अब आप बहुत प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर अखलाक भाई कहते हैं कि अंसर चांद पे पहुंचने वाला था, अचानक जहाज का टायर पंचर हो गया, नींद से जा गए होंगे मुझे ये लग रहा है। और जी हमारे साथ है यहाँ पर फहीम भाई, लिखते हैं कि भाव रेशम गली में दुकानदार ऐसे हैं, जो भी प्रोडक्ट उनसे मांगो वो क्रीम उनके पास ना हो तो पांच और क्रीमें दिखा देते हैं, कहते हैं ये उससे भी ज्यादा अच्छी। हाँ बिल्कुल, असम रेशम गली में ना असांगे खबर आए तरीने तांगे दसी नहीं आना, तो बाबा इन चीजों का थोड़ो बच्चो। अगर दुकानदार तवां सा भी आ ठगी करे तो उनके चोस बाबा सीधी गाल कर नथई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तक घुराए वठो बाबा, बाकी असा के गुमराह न कर, डाटा गुमराह थे लायो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा, इस्तेमाल कयो, पंहिंजी खूबसूरती जो ख्याल रखो।

हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोस्ट को लाइक शेयर कर रहे हैं। नहीं अच्छा, ये हमारे साथ है मीरू खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई, शफन अली, मीर बहर, अब्दुल खालिक सियाल, सब भाइयों को वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। और एम अली मोरो सिटी से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा मुस्कान डी स्किन की क्या बात है, हदीका ज्ञानी का सॉन्ग तो सुनाए, हाजिर हाजिर बिल्कुल बुधरायू था। और हमारे साथ है जयपाल भाई, कहते हैं कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर सारे फूल गुलाब रखता हूँ, दोस्त कम जरूर है मगर जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ, बिल्कुल ये हुजन गुर्ज।

0: टॉपिक क्या है वापस आकर बताती हूँ मैं, और यही आप रहिएगा। टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड इज कैन ब्यूटी शो, सुनते रहिए और हमारे साथ रहिए।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.

सेंटकॉम ईरान टैंकर्स ते हमले जो वीडियोस भी जारी करे छड़ियो। सेंटकॉम मुजिब ईरानी ऑयल टैंकर्स खिलाफ कार्रवाई पासदारन इनकलाब पारा अमरीकी बेड़न के निशानो बनाने वाले कोशन बात कई वही। अमरीकी परदेही वजीर मार्क रोबियो भी चया है तेहरान अमरीकी बहरी बेड़न के बीहर निशानो बनाने की कोशिश कई तो ईरान जहा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वा। ऑयल टैंकर्स से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी अदबन से जवाबी वार उर्दन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाए वो। आबनैरुस में दह का बेड़न के निशानो बनाने की दावा रूसी मीडिया मूजिब अमरीकी फौज उर्दन के शहर अल रिज़क में कायम अमरीकी अड्डन के निशानो बनाए वो। अमरीकी बहरिया के बिन के निशानो बनाए वो। पासदार इनकलाब है उर्दन में अमरीकी अड्डे से कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाजन के भी वो नुकसान पहुंतो है। उर्दन पारा ईरानी मिजाइल हमलन की भी तस्दीक कई वही। वजीर आजम की सदारत हेठ फिनांस प्लान 2026-28 बाबत इजलास पांजो घर स्कीम ज़रात एसएमएस में तरक्की लाय फिनांसिंग जो जायजो वरतो वो। शहबाज शरीफ हारन के मालियाती वसीलन ताई रिसाई बंड बिना रंडक यकीनी बनाने की हिदायत कंदे घट आमदनी वारन के सस्ता घर फराम करण पहरी तरजीह है। हुकूमत से पेट्रोल के अघन में घटताई बाबत संजीदा गालियों करे रहा हूं। कुछ तजवीजों भी हुकूमत आडो रखी हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम धरण दौरान हुकूमत राबतो कयो मामले ते असां भी अपोजिशन से राबता कया हैं। पेट्रोल सस्तो थियण घुर्जे। मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वजीर ज़ियाल अंजार के तलबिये जो वक्त तब्दील कर छो। घरू वजीर ज़ियाल अंजार के 10 सितंबर 11 वगे पेश थे हिदायत। कमीशन पांजो हुक्मनामे में चया है घरू वजीर वाजिब करे तो वारसन के सवाल पूछने जो हक आए या न। रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पारकमान नाले वाले कानूनदान सनाला जो लाश हथ पुलिस लाश तवील में वी मामले की जांच शुरू कर छी। गड़ी यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंदन हथा कत्ल लाश अस्पताल मुंतकिल सखर बायपास वट हथियारबंदन नौजवान मुनीर अहमद पुट गुलसन जाफरी के कत्ल कयो। वाके बाद हथियारबंद फरार थी वह इतलाते पुलिस लाश तवील में वी अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवण है वाके जा कारण मालूम न थी सकया वधीक जांच कई पई वे। कराची की अदालत गुल प्लाजा साने के जांच लाय जीआईटी जोन वाली इस्तदा रद्द कर छी। अदालत जीआईटी जोन मजिस्ट्रेट जो अख्तियार न है। बुधनी दुना तनवीर पास्ता समेत बिहार नामजद जवाबदार पेश थे। वकील अदालत पुलिस के सरकारी इदार की कारकर्दगी जायजो वो हुक्म दिनों पर पुलिस समूर इदार क्लीन चिट कर पुरानो चालान बीहर पेश कयो। पुलिस बदनीति के बुनियाद से एसोसिएशन के अहदेदार नामजद कयो। गडियल जांच टीम जोड़ी वही अदालत इस्तदा रद्द कर छी। कोटड़ी में मालगाड़ी जा टे गाडा पटड़ी तां लही वया। अप ट्रेन से गाड़ियों की अच वन मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरसा कराची का यूसुफ वाला कोयलो खी वेंदड़ मालगाड़ी जा टे गाडा पटड़ी तां लही वया। अप ट्रेन मुअतल थियण सबब मालगाड़ी के डाउन ट्रैक तां गुजारे वो। न्यू सईदाबाद वेझो गोठ भाई खान वट पेर तिरकण सबब ढोरे में बुडी वल राजा जो लाश गोठाणन पांजे मदद पान तहत कढ़ी वरतो। पुलिस लाश अस्पताल में जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर छो। पुलिस गुजरियल मामले ते बिन जणन के हिरासत में भी वरतो।

0: ऐं सिंध जे क्लासिकल रागी उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे विछोड़े खे शाहेतालीअ वरिया विहामी विया। ख़ानदान जे फर्दनि शागिर्दनि ऐं मदान जी टंडरी आदम में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे मज़ार ते हाज़िरी। गुलनि जी चादर चाढ़े भेटा पेश कई वई। उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जा गायल कलाम अॼु बि झर जंग मशहूर बणियल।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन खां आजमायल सखर वारन जो जीजान डोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी, इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03000338-5569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

सेलिब्रिटी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आपको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए। अच्छा किशोर भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हो गया। ऐसी बात है, वैसे एक चीज मेरे साथ ही हुई थी बचपन में, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। तो हाँ, ये आए जैसे मानो खुदा हुआ है, जैसे साफ दिल जमा हुआ है ना, वो बिल्कुल ये करना है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए मुझे ये लगता है। अच्छा, सो अखलाक भाई को शायद नींद आ रही है और ये हमारे साथ हैं जी रिजवान अली। रिजवान भाई क्या कहते हैं, कल आपने मेरी फरमाइश नहीं लगाई थी। बिल्कुल जी, आपकी फरमाइश मुझे याद है, आपका गाना लगाते हैं। नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, अटियारी से आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। फरवा कहती हैं आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया फरवा। एहसन अली बुक्टी हमारे साथ है लाड़काना से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। लाड़काना में आपको हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। ऐसे जब मैं बोल रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि लाड़काना में आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ना एक ये क्वालिटी है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और यानी कि इसका कोई डर नहीं कि भाई आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ये प्रॉब्लम है स्किन के साथ हो, आप नहीं प्रोडक्ट यूज कर पाते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, दिल खोल कर इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। ओके जी, चाचा खालिद भी हमारे साथ ही। चाचा खालिद बिल्कुल जी, टॉपिक आपको समझ आया या अभी तक नहीं आया? आरडी किंग हमें सुन रहे कहते हैं, राशिद अली शो बहुत जबरदस्त है, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। बख्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फहीम भाई कहते हैं, मैं संडे वाले दिन कराची में अवेलेबल कराऊंगा और सर खालिद से भी तबीयत पूछने जाऊंगा। चलें जी, अच्छी बात है। और आप जरा मालूमात कीजिएगा कराची में कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने की नीड है। वैसे जहां जहां पर आप रहते ना वहां पर तो करा ही रहे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और बाकी जो लोग जाएं तो वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से परचेज कर सके। अच्छा बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं। और यहां पर महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर चुके प्रोग्राम को, कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम में मार्जे, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद, वेलकम। और जी खालिद नोटकानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। मातली में बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं?

जल्दी तसल्ली कर लीजिए, लाड़काना पूरे लाड़काना में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, तो आप भी बस कहीं पर भी जाइए, आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ नहीं भी मिल रही है, फर्ज कर लीजिए कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर है वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जी नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे जो नंबर आपको मैं बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जी पाल भाई, कहते भाई नंबर तो ऐसे बता रही हूँ जैसे वो फ्री में दे जाएंगे प्रोडक्ट। नहीं, नंबर आपको याद हो जाए ना, इसीलिए ऐसे बताती हूँ आराम से स्लो स्लो। वैसे कई लोगों की ये भी शिकायत आती है कि सदरा बड़ा तेज बोलती है, नंबर बड़ा तेज बताती है, तो हम नोट ही नहीं कर पाते, इसलिए मैं जरा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा स्लो में बता दूँ ताकि आप जरा नोट कर लें।

अच्छा खालिद भाई जान कहते हैं कि मातली में नहीं अवेलेबल हुई अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम। भैया आप जाइए तो मालूमात लीजिए और वहाँ से अच्छे से पूछिए दो चार जनरल स्टोर से, और फिर जो आपको नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप रابطہ कीजिएगा, ठीक है। और हसनैन दर्स भाई हमारे साथ है, शहर दड़ोखा हसनैन दर्स, सतार दर्स, वकार दर्स, सूरन जो सतायल, शायर फिदा हुसैन दर्स, आईली भावन के चौथा भली करे आया। अच्छा जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। सही बात है, सारे लोग कराची जा रहे हैं, कराची वाले लोग आ जाएंगे।

जी असां भाग वारा आहियूं छो त डे स्किन ब्यूटी क्रीम असांजी आहे तव्हां बि भाग वारा थियो बाबा डे स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजी करायो छो त वठी अचो ऐं डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो छो त तव्हां सुहिणा थी वेंदा ऐं ये हमारे साथ जी अच्छा महर इरफान सियाल साहब कहते हैं मैम आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम डिग्री ओके जी डिग्री से आप हमारा शो सुन रहे सर बहुत शुक्रिया और पहलवान चांडियो भाई हमारे साथ हैं क्या बात है हेलो जी हेलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएगा पहलवान भाई ओके जी सो यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना अपनी जगह से नहीं हिलिएगा ठीक है मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
0: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातिली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं बहुत ज्यादा और आपकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाता है उससे भी बहुत ज्यादा। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए खूबसूरती और खूबसूरती हासिल करना कितना आसान काम हो जाएगा। वैसे तो जब आप मार्केट जाते हैं तो वो वाली बात है कि बिल्कुल दुकानदार बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसकी ज्यादा आजकल डिमांड चल रही है, लेकिन ऐसा कोई सी नहीं होता। अगर आप मार्केट जाएं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाएं, आपके जहन पे ये चीज होनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कभी सिद्रा क्यों इतनी बातें करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि पर्सनली बताऊं तो भाई हमारे घर में भी यूज हो रही है, सब लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, ये दोनों चीजें बड़ी निराली बना देते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम भी है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा जैसे कि आपने फेशियल किया हुआ है। तो ये इतना कमाल का प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो भाई क्यों आप चांस मिस कर रहे हैं, मौके पे चौका मारिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में आप शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और साफ सुथरी अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को कर देगा। आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जो कि आपकी स्किन को बनाए इतना खूबसूरत, इतना शानदार, ये बस आपकी सोच है। अच्छा, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज भी आपको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने वाले लोग भाई रेडी हो जाइए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करें तो आप जरा इन चीजों से भी बचें कि दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट पकड़ा दे। कहते कुछ मासूम लोग होते ना, पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको नहीं होता पता, बस वो जाते हैं दुकानदार उनको जो भी बोलता है तो बस वो यकीन कर लेते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर औरत का फोटो है, ठीक है, डॉक्टर माई जो फोटो आहे। जॾहिं तव्हां ॾिसो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे, हुन जे मथां हिकिड़ी माई जो फोटो आहे जेका डॉक्टर आहे, त पोइ तव्हां सम्झी वञो ओ हीअ अथव उहो क्रीम जेका सिद्रा ॿुधाईंदी आहे। बिल्कुल ही, सो इहा निशानी तव्हां यादि रखी छॾियो, जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त माई डॉक्टर जेका आहे हुन जो फोटो ॾिसी करे वठिजो, ठीकु आहे। ऐं ॾाढी सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान खां ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे मिले थी, तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे। ऐं सॼे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 या 3 अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि उन्हनि मां हिकु आहे। सो तव्हां ख़ुशि नसीब आहे, तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहुती आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो वठो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो ऐं सुणा सुणा थी वञो। अच्छा, तव्हां नंबर ते राबितो नथा कयो छो भला? नंबर से रातो कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। अच्छा, हुन खां अलावा हिकिड़ी अदी मूंखे चयो न त मातली में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त अदा हुनखे ॾसींदमि मां त तव्हां फानी ऐं माती खान जनरल स्टोर आहे जंहिं ते तव्हां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। फानी जनरल स्टोर ऐं माती खान जनरल स्टोर ते तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थियल आहे, मातली वारा वञी उतां वठी सघंदा, ठीक आहे। सो बाक़ी ॿिया बि कुझु जनरल स्टोर हूंदा जेके आराम आराम सां मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा त तव्हांखे ॿुधाईंदा वेंदासीं। सो इहे उहे जनरल स्टोर आहिनि जितां तव्हां वञी आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। बाक़ी नंबर ॿुधाईंदी हलां जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा, त उहे नंबर आहे, सभ खां पहिरियां जेको हिकिड़ो नंबर आहे उहो आहे 03-1250-25907-0312-50-25-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09-3732-73-4
84390 बिल्कुल सही नंबर आहे. हिन नंबर ते तव्हां कॉल बि करे सघो था, मैसेज बि करे सघो था. ऐं भाई साहब खे ॿुधायो, भाई साहब असां वटि कोन थी मिले वॾी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराए वञो, असां बि हणूं, असां बि सुहिणा थियूं.

ओके जी, हम लास्ट लिंक में आ चुके हैं प्रोग्राम की, तो सब लोगों को वेलकम इन खुशामदीद। फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ डॉक्टर जो नालो छाए, डॉक्टर माई जो नालो डॉक्टर आए, परायन माई जो नाला न पसंद आ गया। बस तव्हांखे निशानी ॿुधाई न, निशानी ते तव्हां गौर कजो, सही आहे जी। उन्हनि माण्हुनि खे जंहिंखे थोरो बेवकूफ़ बणाईंदा आहिनि दुकानदार, उहे थोरो उन्हनि खां होशियार आहिनि, सही आहे। और यहां पर जी

अच्छा ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि ताल्लुक मोहब्बत का ही हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से ऊंचा मकाम रखते हैं। और लिखते हैं भाऊ जी, जनाब खुशी जी की तरफ से भी सलाम पूछ रही थी आपका, दीदी का शो ज्वाइन करते हो? मैंने कहा कभी कभी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा खुशी का बताओ कैसी है, ठीक ठाक है, मजे में है? और ये हमारे साथ है, किसी ने मैसेज किया है, सिर्फ लिखा है हाय कैसी हो। जी हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कौन है और कैसे हैं। और ये हमारे साथ हैं जी जुलरी का खाले कलाशारी शो नाइसा सॉन्ग फरजाना परवीन जो बुधायो। फरजाना परवीन तांके बिल्कुल बुधराइंदा सी भाजू मोहब्बतवान पिनाई बुधायो, तांटी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई या कौन? अच्छा मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि चापिक फ्यूचर में जाऊंगा तो सबसे पहले कुछ देखना है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि वो जो फेस पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है तो रिजल्ट चेक करूंगा जाकर। इतना फ्यूचर में जाएंगे, बस ये देखने जाएंगे। ये तो आप वैसे ही अभी चुटकियों में देख सकते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा रिजल्ट है। जयपाल भाई कहते हैं कि वैसे भाव ट्राई करूंगा मगर पहले खुशी जी को यूज करवाऊंगा। ओके ओके जी ओके, भाभी को पहले यूज करवाइए फिर आप यूज कीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा दिवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर, मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें। भाई रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं, तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है?

यूज करवाइए, फिर आप यूज कीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा दिवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर में भी आपका शो, दिवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर में भी आपका शो सुन रहा हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें भाई, रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं, तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है? चाह के मारे कोई हिते छो आता कोई हिते छो हर के नो पांजो पांजो एकड़ो आज को न तो रीजन आहे। सो थैंक यू तांजो मोहब्बत आन ताने काबिल समझो पया, आई यकीन जानो त इलाही तकलीफ थी जडे बिला वजह तवा के मानू तंग करना है। सो खैर इन गालन के त डिठो विंदो बढ़हाल तवा मुके बुधाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम करें ता इस्तेमाल कयो। और जी ये खालिद भाई हमारे साथ हैं जो हमें मातली से सुन रहे हैं, तो मातली में बिल्कुल आपको बता दिया कि आप कहां से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप मातली में जाइए पानी जनरल स्टोर के ऊपर या फिर माथी खान जनरल स्टोर के ऊपर, वहां पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। अच्छा ये हमारे साथ है गुलजार हुसैन। ओके जी गुलजार भाई आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके साथ। भाई मैं भी आपको यही कहती हूँ अपने एरिया में ही विजिट किया करें, बताएं जरा, बताएं नहीं बल्कि पूछे लोगों से कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर आप जाएं अपने दरवाजे से निकलें जो भी करीबी जनरल स्टोर से वहाँ पर आपके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाए। अच्छा फरवा फरवा तमा गाने की फरमाइश कई मां ॾिसां थी हली वियो त हलाईंदो न त 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं। अच्छा पहलवान चांडियो भाउ तव्हां बि गाने जी फरमाइश कई आहे ऐं तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो, सो थैंक यू सो मच। रमज़ान भाभी असांखे जॉइन करे चुको आहे, रमज़ान भाउ तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। अच्छा फजीला कहती है कि टॉपिक में देखना चाहूंगी कि हमारी आरजे सिद्रा मुस्कान एफएम पर है या हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है रेडियो, क्योंकि आगी वजह से तो सुनते हैं। यदि वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आपका शो सुने, आरजे खाला सिद्रा मुस्कान का शो सुने। अच्छा चलिए जी इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती रही है।

ये चाहते हैं कि भाई चेहरे की वजह से थोड़ा परेशान है, स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, हर तरह से आपको ये लगता है कि भाई हमारी स्किन के मुताबिक तो कोई प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लगा चुके हैं आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, तो एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर देखिए, क्योंकि वैसे ही जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन सब डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। और एक मजे की बात है कि इसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपकी ये नाइट क्रीम भी हो जाएगी और आपको मिलेगा ऐसा निखार जो कि खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल कराकर हासिल करती हैं, आपको मिल जाएगा जी थोड़े थोड़े टाइम में और थोड़े थोड़े पैसों में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए। बिल्कुल जी, शाम जो दिलकश नजारो तू वही माँ, समुंड जो छोलियों किनारो तू वही माँ, हिते बियो गानो बुधंदासीं, बस अलाए कंहिंजो ही गानो हूंदो तव्हां कॾहिं कॾहिं मूंखे चरियो करे छॾींदा आहियो। एॾियूं गाने जूं फरमाइशूं कबियूं आहिनि, न कयो बाबा न कयो, न त कॾहिं जिन चढ़ियो न मूंखे, कंहिंजी फरमाइश कोन लाहींदी मां। ऐं बाक़ी जंहिंजा रहिजनि था मूंखे अची शाम वारे प्रोग्राम में फरमाइश कजो, बिल्कुलु तव्हांजा गाना हलाईंदासीं। और एडवोकेट कामरान शाह सारकी हमारे साथी जी, वालेकुम असलाम, ख़ुशामदीद कहते हैं भाईजान को।

अच्छा चाचा बिल्कुल सिंधी में नंबर ॿुधाईंदी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके सिंधी नंबर जेको आहे न सवलो लॻंदो आहे. अच्छा सफ़दर अब्बास में सुन रहे हैं. अच्छा सफ़दर अब्बास कहते हैं सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, सुपर हिट मैसेज करूं आपको, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं आप. ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं वैसे ये डॉक्टर तो अपनी है, तुम सुना था शेरा.

0: गयो।
1: भाई ये गाने चलाकर हम उन गानों की जो ना वाइब ले रहे होते। अच्छा शुएब मंगी भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत, वरी तां सां मुलाकात मुझे थे पई 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो ओ हिनो सारो ख्याल रखना, आई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कर जो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम डाडी भली क्रीम अथव, मजाक न अथव वाला तव इस्तेमाल कर डिजो, तव के डाडा भला रिजल्ट मिलंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड क्रीम आए, ट्राई करे डिजो।

ऐं पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखो, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, सॼो फीडबैक रहिजी वियो आहे, गानड़ो शानड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बैरी जहाजनि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमले जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिब ईरानी आयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासदारनि इनकलाब पारां अमरीकी ॿेड़नि खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशुनि बाद कई वई। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्क रूबियो बि चयो आहे त तहरान अमरीकी बैरी ॿेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा आयल टैंकर तबाह कया वेंदा। आयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी हदफ़नि ते जवाबी वार उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। आबना अरुंस में बि 10 खां वधीक ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रिज़क में क़ाइम अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी बैरीअ जे ॿिनि खे बि निशानो बणायो वियो। पाज़र इनकलाब चयो त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइलनि जे हमले जी तसदीक कई वई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि फिनांस प्लान 2026-28 बाबति इजलास। पंहिंजो घर स्कीम ज़राअत ऐं SMEs में तरक़ीअ लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ हारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रिसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। हुकूमत सां पेट्रोल जे अघनि में घटिताई बाबति संजीदा ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। कुझु तजवीज़ूं बि हुकूमत आॾो रखियूं आहिनि। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त धरणनि दौरान हुकूमत राब्तो कयो मामले ते असां बि अपोज़िशन सां राब्ता कया आहिनि। पेट्रोल सस्तो थियणु घुर्जे। सिंध विरहाङे वारनि बयाननि ख़िलाफ़ सिंध बार पारां सुभाणे यूनिटी ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान। अदालतुनि में बि को वकील पेश न थींदो। सिंध बार काउंसिल जो चवणु आहे त सिंध जे वहदत ऐं यकजहतीअ ख़िलाफ़ कंहिं बि क़दम खे क़बूल न कयो वेंदो। सिंध विरहाङे वारा बयान बर्दाश्त जोॻा न आहिनि। एहतजाज तौरु सुभाणे अदालत कारवाई जो बाइकाट कयो वेंदो।

0: कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बैरी जहाजनि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमले जूं वीडियोस बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी आयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासदारनि इंकलाब पारां अमरीकी ॿेड़नि खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशुनि बाद कई वई। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्क रूबियो बि चयो आहे त तहरान अमरीकी बैरी ॿेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा आयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: असली चीजां चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो ढोर सेहतमंद। जी जान चारो मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109 03000-3105-109।
5: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03000-3385-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: फिल्म में शामिल
4: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर
3: पहरी चूंड अमल कराइण लाज़मी करार ॾियण जी तजवीज़ शामिल वक़्त ते मकानी चूंडूं न थियण जी सूरत में रिटायर्ड मेयर या चेयरमैन खे एडमिनिस्ट्रेटिव तौरु कम करण जारी रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई यूनियन काउंसिल ऐं यूनियन कमेटी जे चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन खे बेतमादी वारी तहरीक बाबति छिकूं बि तरमीम में बिल में शामिल
4: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-310-5109, 03000-310-5109।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03200-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था गोश्त सां गॾो गॾु।
0: पर कहिड़ो जी जान मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खुशख़बरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद कंसल्टेंट फिज़िशियन होम्योपैथिक मेडिकल जा हर जुमे छंछर आचर ऐं

0: রাপ্তিজি লাইভ, আসিম হুসেন আরাই, 03073592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो
3: शौरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा टी फोर ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस
4: ऑफिस जी मेरापुर, एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808743।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
1: सिंध हुकूमत मकानी कानून 2013 में तरमीमन जो मसवदो तैयार करे वरतो। तरमीमन ते गौर लाए 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी कायम। कमेटी बिल ते मुशावरत बाद रिपोर्ट पेश कंदी। बिल में मकानी इदारनि जे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जा इख़्तियार ऐं ज़िमेवारियूं वाज़ह करण जी तजवीज़। मकानी काउंसिल जी मुदत ख़तम थियण खां 120 ॾींहं पहिरीं करण लाज़मी चूंडू न थियण जी सूरत में रिटायर्ड मेयर या चेयरमैन खे एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखण जी तजवीज़। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेदमादी वारी तहरीक बाबति छिकूं बि तरमीमी बिल में शामिल।

कच्चो तेल खड़ी विंदड़ पंज ईरानी पहिरीं जहाज़न खे अमरीका काम ईरानी टैंकर ते हमलनि जूं वीडियोस बि जारी करे छॾियूं। मौजूदु पीरकर अमरीकी वेड़नि मिशन वारो किरण जी कोशिश में टैंकर तबाह कया विया। आयल टैंकर ते अमरीकी हमलनि जवाबी वार वधीक बेड़न खे निशीदा हुआ। रूसी मीडिया मौजूदु ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रज़क में क़ाइम अमरीकी डिज़ास्टर खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां

शहबाज़ पंहिंजो तरक़ी लाइ फ्रांसिंग जो जाइज़ो वरितो हुयो। शहबाज़ शरीफ खे वसीलनि ताईं रसाई बिना रंज ॿारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द पहुची विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस खारान ऐं वाशक ज़िलनि में पुजे इतला ते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती पहुची विया। खारान में कार्रवाई दौरान जी कोशिश कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया विया। ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जनम घेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान पहुची वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी हथियार ऐं बारूद कयो वियो। सदर वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कोशिश खे दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे वारे अज़म जो बि वरिजायो।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई,
3: अपना शहर अपना घर की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

कचो तेल खड़ी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिब ईरानी ऑयल टैंकर ख़िलाफ़ कार्रवाई पासा इनकलाब पारां अमरीकी वेड़नि खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी पटेई वज़ीर मार्को रुबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी वेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई ते ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी हदफन ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अड्डन के निशानो बणायो। आबना हुर्मुस में 10 खां वधीक बेड़न के निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फौज उर्दन जे शहर अल रज़क में कायम अमरीकी अड्डे के निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जे ॿिनि डिज़ास्टर्स खे बि निशानो बणायो वियो। पासारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अड्डे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल जे हमलनि जी तसदीक कई वई। ही अस्पताल आहे या मज़ाक? HIV पकड़जी वियो। इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जी इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स सानहे ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मुतलीअ खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफ़ारिशुनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अवां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी। हेमल वली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाक़िए जी ख़बर नाहे? केतिरनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली ऐं बि चयो त हिन मुल्क में न जुज़ा आहिनि न सज़ा आहे। को निज़ाम सज़ा जो नाहे। जेकॾहिं अवां इस्लामाबाद जा ॿ अस्पताल बि संभाले नथा सघो त उहा ॿुधी मरण जी ॻाल्हि आहे।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मालवन भारन लाए खुश खबरी, पंजा सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अम्हां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर,
3: सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं,
4: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
6: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
6: हाणे अचो मेरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: कान्हे का अलहमदिल्ला जेको आहे सो छो जो शिफ़ा अरब पाक ॾींदो आहे, लेकिन असां वटि खोड़ सारा इन मर्ज़ में मुबतला पेशंट। छो जो मां पहिरीं ॻाल्हि कई त असां वटि जॾहिं रेशो ज़्यादा जंहिं तकलीफ़ जो हूंदो आहे त कोशिशि कंदा आहियूं त उन बीमारीअ खे हाईलाइट कयूं ऐं उहा मंज़र आम ते जेको आहे सो आणियूं या उन्हनि जे बारे में जेको आहे सो पेशंट्स खे ॿुधायूं या पंहिंजनि लिसनर्स खे ॿुधायूं त उन खां हू कीअं रोके सघनि था ऐं उन जो जेको आहे सो कहिड़ो बचाव करे सघनि था। इन हवाले सां जेको आहे सो असां वटि खोड़ सारा अहिड़ा पेशंट ईंदा आहिनि, असां वटि मरीज़नि जा व्यूज़ बि मौजूदु हूंदा आहिनि त उन मरीज़नि में अलहमदिल्ला काफ़ी सारो जेको आहे सो रिलीफ मिली वेंदो आहे ऐं काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो हिकु त जेको आहे सो एहतियाती तदाबीर मां ज़रूरु ॿुधाईंदुसि त जेको आहे सो छो जो उहो जो एहतियात माण्हू करे बि कुझु बचा करे सघे थो। एहतियात इहो ई आहे त हिकु त जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त वजह ॻोल्हबी आहे त कंहिं वजह जे करे तकलीफ़ थिए थी, वजह थिए थी ज़्यादातर कंध झुकाइण जे करे, त जेतिरो थी सघे त कंध खे घटि जेको आहे सो माण्हू झुकाए ऐं जेको आहे सो ऑफिस वर्क बि करे थो थोरो कंध खे स्टैंड पोज़िशन में रखे, जेकॾहिं मोबाइल जो इस्तेमालु आहे त उन उहो घटि करे, कंप्यूटर जो इस्तेमालु आहे त उहो पंहिंजो लिमिटेड करे ऐं उनखां पोइ कंध खे सिधी पोज़िशन में रखी करे जेको आहे सो कंदो त उन सां बचा थी सघे थो। या विहाणो आहे जेकॾहिं अनबैलेंस आहे त उहो माण्हू दुरुस्त करे सघे थो। अहिड़े रस्ते सां जेकॾहिं गाॾी ते वञे थो त स्पीड हुनजी गाॾी जी उहा नॉर्मल रखणी आहे त जीअं हॾियुनि ते ऐं रगुनि ते जेको आहे सो दॿा न अचे। सो इहो जेको आहे सो हिकिड़ो सुठो तरीक़ो आहे बचाव जो थी सघे थो। उन खां पोइ वञी जीअं दवा होम्योपैथिक में मौजूदु आहे गांइ। उन खां अलावा जेकॾहिं कंहिंखे थिए थी त पोइ घणा वरी हिकिड़ी लास्ट ॻाल्हि जेकी आख़िरी ॻाल्हि छो टाइम घणो शायदि वठी आहियां, आख़िरी ॻाल्हि इहा बि दोस्तनि सां कंदासीं त घणा इन खे अची वठंदा आहिनि, मालिश कराईंदा आहिनि ऐं मालिश तव्हांखे ख़बर आहे त घणा कराईंदा आहिनि ऐं मालिश जे लाइ असां सख़्ती सां मना कंदा आहियूं त हॾे वारी जॻह ते चाहे कहिड़ो बि हिसो हुजे, चेल हुजे, कुलो हुजे, चाहे जेको आहे सो जेको आहे सो टंग छो न हुजे, पोइ उनखे ऐं इहे त हिकिड़ो नाज़ुक हिसो आहे, मालिश बिल्कुलु न आहे हूंदी कराइणी। को बि जेकॾहिं तव्हां वटि बाम आहे, क्रीम आहे, तेल आहे, उहो बिल्कुलु लॻारायो। लॻाइण सां लॻाराइण सां ईअं थींदो आहे त उहो अंदरि अव्हांजे रगुनि में, अव्हांजे जिस्म में, अव्हांजे हॾनि में जज़्ब थी वेंदो आहे ऐं उहो पंहिंजी जेको आहे सो असरात ॾेखारींदो आहे। जेकॾहिं उन तेल में दम आहे, मिसल हिकिड़ो ऑलिव ऑयल असां इस्तेमालु कराईंदा आहियूं, ज़ैतून जो तेल, छो जो ज़ैतून जो तेल हिकिड़ो कुदरती तेल आहे ऐं उन में अलाह ताला तमामु घणी शिफ़ा रखी आहे ऐं उन सां बिल्कुलु माण्हू शिफ़ायाब बि थी वेंदा आहिनि। लेकिन उन जो तरीक़ेकार बि ईअं आहे त सिर्फ़ु लॻाइणो ई आहे, लॻाइणो आहे जे हू जज़्ब थी वञे, उनखे महिटणो न आहे। सरह जो तेल आहे, मां अक्सर ॾिस ॾींदो आहियां सरह जे तेल में हेड विझी गरम करे उहो तेल लॻायो, उन सां बि काफ़ी अव्हांखे रिलीफ़ मिली सघे थो, फ़ाइदो पइजी सघे थो। को बॉम आहे उहो हणी सघो था, या मिसाल जीअं मां ॻाल्हि कई त जे ज़ैतून जो तेल आहे उहो लॻाए अलॻि से वरी पाणी गरम करे उन में लूणु विझी ऐं उनजी टकोर करणु, उहा काफ़ी अव्हांखे सपोर्ट ॾेई सघे थी। सो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे माण्हू जेकॾहिं मद्देनज़र रखे थो ऐं उन्हनि ते ख़्यालु करे थो ऐं उन ते अमल करे थो त माण्हू इन तकलीफ़ खां जेको आहे सो बची सघे थो। वॾी महिरबानी सर,
1: तमामु घणी महिरबानी सर, सुठी बहितरीन ॼाण ॾिनी। जे लिसनर्स तव्हां कॉल ज़रिए ॾिसे सघो था ऐं असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-8051। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि, जिन में गुर्दे पिते मसाले जी पथरी जो संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कंद गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाले जे खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न विधणु, ऐं मर्दनि ऐं औरतुनि ते पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ते सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एक दफो बीहर अवां खे लाइव कॉल नंबर नोट कराईंदा रहंदासीं, जीअं आहे 0301-2196-851। इन ते कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति अवां ॼाण हासिल करे सघो था। जी डॉक्टर साहब, कॉल जी तरफ़ रहंदासीं।
0: जी साईं, बिल्कुल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: नहीं डॉक्टर साहब ना कर रहा हूं।
1: जी बाबा, छा पुछंदा चाहिंदा डॉक्टर साहब? मुखातिब आए
2: साईं पीरवा सा कर रहा मैं चला आ मर से कर सर।
1: जी जी सर।
2: पर कई टाइम में मुके सूर बोल तेल में अगर एक थ्रो करा तो मैं उन्हें गुर्दे में मुके पथरी हूं।
1: अच्छा,
2: तो डॉक्टर से कभी को सलाह पूछिया चाहूं दादा ऑपरेशन करा जी।
1: सही।
2: तो हां जी डॉक्टर पूछो दवा ने जा है तो मां ये टेस्ट टू बेस्ट टू होय जगह के
1: बगैर ऑपरेशन जो इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब तो
0: जी बिल्कुल अच्छो आवाज़ जो इशू वो हुए थोड़ा आवाज़ बिल्कुल घट पे आया दोस्त जो सो असा पांजे प्रोग्राम जी शुरुआत में ही जेको है सो आवाम उनके बुधायो त यो बुधाय वेंदा आहियूं त चाहे पथरी आहे चाहे बवासीर आहे या अहिड़े क़िस्म जा जेके चाहे गुर्दे में पथरी आहे पिते में पथरी आहे बग़ैर ऑपरेशन जी उनजी ट्रीटमेंट असांजे होम्योपैथिक दवा जे रस्ते मौजूदु हूंदी आहे। वधीक ॾिसो शर्तिया इलाज केर बि कोन कंदो आहे न वरी असां कंदा आहियूं। असां हिकिड़ो शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, इहो ई सबबु आहे जो दवा जॾहिं ॾींदा आहियूं त मरीज़ खे असां कोन जेको आहे सो मजबूर कंदा आहियूं या चवंदा आहियूं त तव्हां अची फ़ोन ते ॿुधायो। हू हिकिड़ो इनकरेज करण जे लाइ यानी हिमथाइण जे लाइ असांखे या जेको आहे सो जेके ॿिया उहे वीचारा ग़रीब हज़रात उहे दोस्त जिन खे इहा तकलीफ़ आहे ऐं हू नंढड़ी पथरीअ जे करे या वॾी पथरीअ जे करे सिधो उते वञी ऑपरेशन कराइनि था, इहे उन्हनि खे ॿुधाइण जे लाइ उन्हनि खे सम्झाइण जे लाइ इतलाई वेंदा आहिनि ऐं कॉल करे ॿुधाईंदा आहिनि त तव्हां जो हरूभरू पाण खे अधु कयो था या डॉक्टरनि वटि वञो था ऑपरेशन करायो था ऐं उहा पथरी अॻिते हली वरी जेको आहे सो तयारु थी वञे थी। त इन खां बहितरु आहे त होम्योपैथिक इलाजु अवां करायो। होम्योपैथिक में बग़ैर ऑपरेशन जे पथरी 20 mm ताईं पथरी असां वटि पेशंट जी निकिती आहे ऐं हिकु न अठ अठ ॾह ॾह पथरियूं बि निकितियूं आहिनि। सो इन जे करे वधीक शिफ़ा वरी बि आख़िर में इहा ई ॻाल्हि कंदा आहियूं त अलाह ताला ॾींदो आहे। बाक़ी जेको आहे सो असां क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहियूं, टेस्टूं वग़ैरह जेके आहिनि उहे खणी आई पेशंट खे चवंदासीं त ॾेखारे वञनि।
1: डॉक्टर साहिबु, हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: हैलो
1: जी अदा, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।
1: जी अदा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिबु खां? ऐं केरु किथे था ॻाल्हायो? जी
2: गोॾनि में सूर आहे बाबा, गोॾनि जो सूर कोन थो छॾे।
1: अच्छा, उमिरि घणी आहे?
2: उमिरि साईं 20 साल खनि आहे।
1: किथां पिया ॻाल्हायो?
2: रसूलाबाद खां बाबा, ॻोठु बचल बंबरो जनेसर कंबाणी।
1: ठीकु आहे डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधायो थो, रेडियो ॿुधो।
0: ठीकु आहे, हीअ अधे जी का एज न आहे, अहिड़ी उमिरि न आहे जंहिंमें अहिड़े क़िस्म जी का पुराणी तकलीफ़ हुजे। ईअं वाहिबादीअ जो सूर थी सघे थो, जेकॾहिं हा हिकिड़ो घणे वक़्त खां हुनखे रहंदड़ आहे त उनजी ट्रीटमेंट मुकमल थी सघे थी। बकाया हू जेको आहे सो जेकॾहिं ईअं उनखे वाहिबादी जो सूर आहे त घर वेठे ज़ैतून जो तेल या जीअं मां ॻाल्हि कई सरहन जे तेल में हेड विझी उहो लॻाए या राति जे टाइम में खीरु गरम करे उन में हेड विझी ऐं उहो बि खीरु पी सघनि था इनशाला ताला, उन सां बि काफ़ी अफ़ाको थी सघे थो। लेकिन जेकॾहिं इन जे बावजूद उनखे उन इहो कुझु कयो आहे ऐं फ़र्क़ु न पियो आहे त कुझु असांजे होम्योपैथिक मेडिसिन्स आहे उहे ट्रीटमेंट वठी सघनि था इनशाला ताला, उन सां बि काफ़ी फ़ाइदो पियो।
1: जी, लाइव कॉल जो नंबर आहे प्रोग्राम में 0301-2196-851। इन ते तव्हां कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिल करे सघो था।
0: जी बिल्कुलु, पंहिंजे असां ॿुधंदड़नि ताईं इहो पैगाम ज़रूरु पहुचाईंदासीं त जेकॾहिं कें भी बीमारी के मुतलिक या शेड्यूल के मुतलिक अवां के पुछनो है त कॉल नंबर मौजूद है 0301-2196-851 यानी बुड़ी टे बुड़ी एक बक नव छः अठ पंज एक यानी 0301-2196-851 ते कॉल करे तवां पंहिंजो मसलो ॿुधाए सघो।
1: वरी महिरबानी सर। सर हाणे वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु गॾु रहिजो ऐं ॿुधंदा रहो GFM 94।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69।

0: आई अदी अज ते डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जडे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
0: मां भी वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर आवा सभी बुधन के खुश आमदीद चौदा प्रोग्राम आए सहज की गाल डॉक्टर मुख्तलिफ़ बीमार बाबत इलाज कह जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो ऑपरेशन जो कामयाब इलाज किया वे तो संदन जोड़न गोडन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो पुरानो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर ए नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट घट बुधन में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीवी मैदे जो सूर मैदे की अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरणियों बारन में कद जो न वधन औरतन ए मर्दन जे पोशीदा बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने थो लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851 न तो तुम कॉल करे प्रोग्राम में शामिल थी सको था एक दफो बीहर डॉक्टर साहब जो एड्रेस तुम्हें बुधाईंदा हलूँ डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 वगे का शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आ असाजे लाइव कॉल जो नंबर है एक दफो बीह तुम्हें बुधाइंदा 0301-2196-851

0: डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मिसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कन गलो पुराणो नज़लो, निछू मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी ऐं नज़र जो कन जो वहण, कन जो सूरु घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघ, टीबी मादे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिले जो वधण, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, ऐं मर्दनि ऐं औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो इलाजु कयो वञे थो। प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थियण जे लाइ असांजो नंबर आहे 0301-2196-8051। डॉक्टर साहिबु, जीअं तव्हां हिन मौज़ू बाबति ॼाण ॾिनी, उन त वधीक जेको तव्हां सर चवणु चाहियो वधीक डिटेल में ॿुधाइण जे लाइ, जेके
1: तरीक़े सां प्यार सां पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधाईंदा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां, त मुख़्तलिफ़ बीमारियूं जीअं असां पंहिंजे प्रोमो में ॿुधाईंदा आहियूं त नक कन गले जे हवाले सां जेके बि प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि, कंहिंजे नक जी हॾी टेढ़ी थी वेंदी आहे या नक जे हॾीअ जे मथां गोश्त अची वेंदो आहे, उन जा खुड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि जंहिंजे करे जेको असरु थींदो आहे, एलर्जी जेके यानी घणे टाइम खां वठी निछूं ईंदियूं आहिनि ऐं उहो न छॾींदी आहिनि, या लटकाइण सां कंधु लटकाइण सां पाणी नक मां पियो वहंदो आहे, उन जो बि मुकमल ट्रीटमेंट मौजूदु आहे। एस्थमा एलर्जी कंहिंखे यानी फेफड़नि जी दमो रहंदो आहे, फेफड़ा जा जेका असां होम्योपैथिक में मौजूदु हूंदी आहे, या कंहिंजो जेको आहे सो तव्हां ॾिसंदा ॿिया खुड़ सारा असबाब जीअं नंढा ॿार आहिनि अॼुकल्ह बिस्तरे में पेशाब कंदा आहिनि, इहो हींअर सिस्टम जेको जेको मसइलो आहे आम थी वियो आहे, मैरूं परेशान हूंदियूं आहिनि त हाणे उन्हनि खे छा कयूं, या सियारे में ॾिसो हंधु मटाइण जो केॾो वॾो इशू हूंदो आहे, इन जे करे उन जी दवा मौजूदु हूंदी आहे त तव्हां जीअं नंढनि ॿारनि खे उन जा बि ॿिया बि रोकथाम जा जेको आहे तरीक़ा हूंदा आहिनि, राति जे टाइम में ॿार खे पेशाब कराए सुम्हारणु घुरिजे ऐं पाणी घटि पीआरिजे राति जे टाइम में, त अहिड़े तरीक़े सां उन खां बचाउ थी सघे थो। लेकिन दवा जे रस्ते इनखे जेकॾहिं थी वियो आहे, उनजो मसानो कमज़ोरु आहे, त हुनजो तव्हां दवा जे रस्ते ट्रीटमेंट ॾेई सघो था, या अच्छा तिर हूंदा आहिनि नंढनि ॿारनि खे तव्हां जेको आहे सो खाराए सघो था, उन सां बि काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पइजी वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको जिन जो कदु नंढो वधे, कद जो इशू हूंदो आहे, ऐं नंढा ॿार हूंदा आहिनि जेके नंढे बचपन खां पोइ उहे हली न सघंदा आहिनि, या डुबरा हूंदा आहिनि, कदु न करे सघंदा आहिनि, वज़न न वधाए सघंदा आहिनि, या जेको आहे सो पाण खे जेको आहे सो हेल्दी यानी माण्हू घटि महसूसु कंदो आहे, त इन हवाले सां बि असां वटि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट मौजूदु हूंदो आहे। असांजी अजड़ियूं भेनरियूं घणियूं परेशान हूंदियूं आहिनि, किन खे अॼु बि हिकिड़ा ॾींहुं आई जंहिंखे चहिरे ते वार हुया, सो तमामु घणी परेशान हुई, लेकिन उनजो बि असां वटि कामयाबु इलाजु मौजूदु हूंदो आहे, उनजा बि खुड़ सारा असबाब हूंदा आहिनि, हार्मोन्स जे घटि वधाई जे करे इहो प्रॉब्लम थींदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो उनजी बि दवा जेको आहे सो आहे जंहिंसां उहो इलाजु थींदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां चहिरे ते छायूं हूंदियूं आहिनि, या चहिरे ते मोहिड़ा थी वेंदा आहिनि, चहिरे ते दाग़ दॿा थी वेंदा आहिनि, पोइ असां वटि अॼुकल्ह फार्मूलाज़ काफ़ी सारा निकिरी पिया आहिनि, चार पंज क्रीमूं पाण में मिलाईंदा हुआ ऐं उहे जेको आहे सो उन ते ख़र्चु थींदो आहे काफ़ी सारो, लेकिन उहो ख़र्चु जेकॾहिं अव्हांजे हमेशह जे लाइ बहितरीन थी वञे त पोइ त बहितरु आहे, लेकिन सिर्फ़ु हिकिड़ो आर्ज़ी उनखे करण जे लाइ त उहो तमामु नुक़सानकारु आहे, उहा आर्ज़ी ई हूंदो आहे, छो जो उहे क्रीमूं जॾहिं मिलंदियूं आहिनि उन क्रीमुनि जो इहो कमु न हूंदो आहे अछो करणु, ऐं उहा असांखे ख़बर नथी पए छो जो असांजी चमड़ी अछी थी वेंदी आहे, असां सम्झो शादी आहे अछे करण जूं जेको आहे सो क्रीमूं आहिनि, लेकिन असल में दरअसल हुन उहे उन चमड़ीअ खे तव्हांजे खे साड़नि थियूं। अॼुकल्ह त अहिड़ियूं इंजेक्शन्स बि निकितियूं आहिनि, अहिड़ा कैप्सूल्स बि निकिता आहिनि जेके खाइण सां सॼो माण्हू गोरो थी वञे थो, अछो थी वञे थो, लेकिन हुननि जा साइड इफ़ेक्ट्स एॾा वॾा ख़तरनाक आहिनि, उन सां गुर्दा ख़तमु थी वञनि था, उन सां यानी ॿिया प्रॉब्लम्स खोड़ सारा थी वञनि था, इन जे करे अहिड़ियुनि शयुनि खां अवां अवॉइड कयो, छो जो हिकिड़ी कुदरत जी तरफ़ां जेकी बनावत आहे उहा कुदरती आहे, कुदरत जी बनावत खे तव्हां जेकॾहिं छेड़ींदव त तव्हांखे नुक़सानु थींदो, इन जे करे जेको आहे सो हा असां वटि जेके मेडिसिन्स आहिनि अव्हां खे पहिरां बि ॿुधायो आहे हिस्ट्री में, हींअर बि ॿुधायूं था, या जेके क्रीम्स आहिनि हिकिड़ी जड़ी बूटियुनि मां ठहियल आहिनि, केमिकल्स माना आहिनि, हू केमिकल्स आहिनि। जेकॾहिं जड़ी बूटियुनि वारी शइ कॾहिं बि अव्हांखे नुक़सानु कोन ॾींदी, केमिकल अव्हांखे नुक़सानु ॾींदो आहे। सो इन जे करे अव्हां उनखे छॾे करे, ऐं असां वटि हिते असल में माण्हू उन जी तरफ़ ज़्यादा इन जे करे था वञनि त उते क्विक रिलीफ आहे, जल्दी जेको आहे सो माण्हू जल्दी जी तरफ़ भॼनि था, त असांखे जल्दी उतां फ़ाइदो पए। भई जल्दी फ़ाइदो पए लेकिन आरज़ी पए त कहिड़ो फ़ाइदो आहे? तव्हां जल्दी त फ़र्क़ु पवंदो उन वक़्तु वेंदो, फ़िलहालु तव्हांजी चमड़ी अछी थी वई, लेकिन तव्हां उनखे छॾे त ॾिसो, छॾण खां पोइ वरी तव्हांखे हुन खां वधीक जेको आहे सो कारा दाग थी वेंदा, रंग अञा वधीक ख़राबु थी वेंदो। ऐं उहे जिन भाउरनि इहो कयो हूंदो, जिन भेनरुनि इहो कयो हूंदो, उनखे अंदाज़ो हूंदो। सो लेकिन ॿुधाइण जो मक़सदु सिर्फ़ु हिन प्लेटफॉर्म तां इहो आहे त तव्हां इन जी मुकमल पंहिंजी ट्रीटमेंट करायो, तव्हांजो जेको असुलु पंहिंजो रंग हूंदो उहो उनजी सफ़ाई थींदी, ऐं उन में जेके चहिरे में तव्हांखे ऐं अॼुकल्ह जेके गर्दो गुबार आहे, उहा जेके मटी जेकी तव्हांखे अची वञे थी चहिरे में, मसामनि में पइजी वञे थी सुराखनि में, त उहा क्लियर थी वेंदी। तव्हां उहा घर वेठे बि जेको आहे सो पंहिंजो हुनजो ॿिया खोड़ सारा तव्हां जेको आहे सो लोशन्स ते ख़र्चु कयो था, घर में पंहिंजो जेको आहे सो उनजी क्लीज़िंग करे सघो था, खीर काढ़े उनजी जेकी मलाई निकिरंदी आहे उन में लीम्बू विझी ऐं उहो तव्हां चहिरे ते लेप करे ऐं उनखे तव्हां कॉटन सां या टिशू सां साफ़ु कंदो, ॾिसंदो त केॾी सारी तव्हांजी मेराण चहिरे मां जेको आहे सो निकिरी ईंदी, ऐं उहो तव्हांजे लाइ तमामु हिकिड़ो फस्ट क्लास चहिरो तव्हांजो शादाब थी वेंदो। राति जे टाइम में तव्हां उनखे गुलाब जे पाणी सां जेको आहे सो धोई सघो था, अर्के गुलाब जेको हूंदो आहे उहो काफ़ी तव्हांखे फ़र्क़ु ॾेई सघे थो। टमाटो हिकिड़ो कुदरती शइ आहे लेकिन उनजा असांजी सब्ज़ी तौर ते यूज़ थींदो आहे, फ्रूट तौर ते यूज़ थींदो आहे, लेकिन उनजा अनेक फ़ाइदा ॿिया बि आहिनि। उन में थोरी मथां खंड लॻाए ऐं उन सां तव्हां चहिरे ते जेको आहे सो लेप कंदो त चहिरे जी जेकी बि मेर मिटी आहे उहा बि न सिर्फ़ु उहा निकिरी वेंदी, पर के इनखे कंटिन्यूस करण सां चहिरे जा दाग धबा ख़तमु थी वञनि था। ऐं हुस्न यूसुफ़ जेको आहे सो जड़ी बूटी आहे उनजो पाउडर मिलंदो आहे, उहो बि जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो ॾही में मिलाए करे चहिरे ते लेप करण सां बि जेको आहे सो चहिरो तव्हांजो हुस्न यूसुफ़ नालो ई हुनजे करे हिनजे रखियल रखियलु आहे, जेको यानी हुन में हज़रत यूसुफ़ जो हुस्न वांगुरु जेको सो यानी कश्मो आहे। अहिड़े तरीक़े सां खोड़ सारी ॿियूं शयूं आहिनि, लेकिन इन खां वधीक इन्हनि शयुनि खां पंहिंजी सिहत जो खां पाण खे ख़्यालु रखिणो आहे। पाणी ज़्यादा इस्तेमालु करिणो, पाणी ज़्यादा इस्तेमालु करण सां अव्हांजे जिस्म में डिहाइड्रेशन जी यानी पाणी जी कमी कान थींदी, अव्हांजी नमी जेको आहे सो जिस्म में रहंदी, चहिरे में नमी रहंदी, त इन सां बि जेको आहे सो अव्हांखे काफ़ी सारो जेको आहे सो फ़ाइदो पहुची सघे थो। पर ऐं गरम शयूं जेके असां चटपटी शयूं इस्तेमालु कयूं था उन्हनि खां असांखे जेको आहे सो यानी चाट थी वई या गरम मसालेदार शयूं थी वई, इहे इस्तेमालु न करणु घुरिजनि। थधियूं शयूं इस्तेमालु करे सघो था, थधा फ्रूट इस्तेमालु करे सघो था, खीरो वंगो तव्हां चहिरे ते लेप करे सघो था ऐं खाई सघो था, उन में 90% पाणी हूंदो आहे, उन सां अव्हांखे काफ़ी सारो जेको आहे सो फ़ाइदो पहुची सघे थो। इहे सभु शयूं, इहे अव्हांजा लोशन, इहे स्क्रब, इहे फेस वॉश सभु इन्हनि मां ई जेको आहे सो अव्हां ॾिसो एप्रीकाट, कोकम्बर, इहे छा आहिनि, इहे तव्हांजा जेको आहे आड़ू, इहे कुदरती हिकिड़ो फ्रूट आहे, इहे शयूं मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि जूं जेको इंग्रीडियंट्स अव्हांजे केमिकल्स में विझी अव्हांखे ॾियनि था उहे पर तव्हां ख़ुदि उहे शयूं जेकॾहिं हिते मौजूदु आहिनि उहे इस्तेमालु कयो, उन्हनि मां अव्हांखे ख़ुदि जेको आहे वधीक फ़ाइदो पइजी सघे।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम
2: भाई, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं?
2: कितो जा गलायो?
0: अदा प्रोग्राम में कॉल की है ना तमा?
2: हां,
0: छा पूछना चाहिंदा डॉक्टर साहब का?
2: ए गोदन में सूर है, वो पूछना चाहिंदा है।
0: गोदन में सूर है, ठीक है। प्रोग्राम वो तो डॉक्टर साहब वहां के बताए थो।
1: दोस्तों के एक रिक्वेस्ट भी है, तवा की खबर है तो ही असन जो संधि प्रोग्राम है, तवा बग़ैर टाइम ख़राबु करण जे अव्हां सिर्फ़ु सिंधी में डायरेक्ट पुछी सघो था, ऐं तव्हांखे ख़बर बि आहे त जेको आहे सो हर कंहिंजो टाइम क़ीमती हूंदो आहे। एक्चुअली जॾहिं तकलीफ़ कहिड़ी बि आहे, मां जोड़नि जे हवाले सां पहिरां बि ॿुधायमि त जेकॾहिं कंहिंखे तकलीफ़ आहे त सरहिन जो तेल आहे गरम करे, आरज़ी जेकॾहिं तकलीफ़ आहे त उहो लॻाईंदा, उन सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजी ईंदो, ज़ैतून जे तेल सां काफ़ी फ़र्क़ु पइजी ईंदो। जेकॾहिं मर्ज़ु पुराणो आहे, तकलीफ़ पुराणी आहे, त उनजी ट्रीटमेंट करण जे लाइ तव्हां असांजी क्लिनिक ते अची सघो था। जी सर,
0: वॾी महिरबानी सर। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो संदन जोड़न गोदन जो सूर कुन रग जो सूर नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर ए नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी सूर ए मुख्तलिफ़ बीमार बाबत ध्यान दींदा है। डॉक्टर साहब एक बी लाइव कॉल की तरफ हलंदासी।
1: जी सर।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: अच्छा ला खुश आयो खैर
0: आ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सता बतायो छा पुछंदा डॉक्टर साहब का।
2: एक आदन का सवाल आया हूं हां मजाम राजपुर।
0: जी जी।
2: यार सेको आ सा के खानदानी।
0: अच्छा।
2: बाबा साईं के वाहे मुखे जो आहे
0: उमर घणी आहे तव्हांजी? ठीक आहे ॿुधो रेडियो ॿुधो मूंखे डॉक्टर साहिब ॿुधाए थो। जी सर।
1: साईं हिकिड़ी ॻाल्हि दोस्त खे ॿुधायां थो। हिकिड़ी ॾिसो हिकिड़ी पुराणी तकलीफ़ आहे ख़ानदानी तकलीफ़ आहे ऐं वॾी पुराणी तकलीफ़ आहे त उहा कंहिं बि ॾस पंध सां सिर्फ़ु तव्हांखे उन तकलीफ़ में फ़िलहालु थोरो रिलीफ़ मिली सघे थो। जान कोन छुटी सघंदी आहे। जान अव्हांजी छुटंदी आहे अव्हांजी ट्रीटमेंट कराइण सां इलाज कराइण सां। जिते तव्हां हिते महांगियूं सुयूं हणायो था बाफ़ ॾियारियो था मशीन इस्तेमालु कयो था उते इहा तकलीफ़ कोन वञे थी। बाक़ी हितां ॾस पंध ते तकलीफ़ कीअं वेंदी? इन जी ट्रीटमेंट थींदी होम्योपैथिक इलाज जे ज़रिए। पहिरियां त इहो कहिड़ो सबबु आहे उहा हिस्ट्री पेशेंट खां वठिबी आहे। ख़ानदानी आहे ईअं आहे डस्ट मां थी आहे स्मोकिंग मां थी आहे कमज़ोरी मां थी आहे छा मां थी आहे पोइ उनजी वरी ट्रीटमेंट थींदी आहे। उहा उनखे तव्हांजे फिफड़नि मां पहिरियां जेको आहे जेके साह जूं नालियूं तंग आहिनि उहे आज़ादु थींदियूं बलगम निकिरंदो वरी उहे फिफड़ जेको आहे कमज़ोर आहिनि उन्हनि जी ताक़त जी दवा ॾिबी त इहा अॻिते जे लाइ उहा प्रोसेस में या इन में ॿ टे महीने जो हिकिड़ो सिस्टम हूंदो आहे जंहिंसां अव्हां जो पेशंट जेको आहे बिल्कुलु इन में तयारु थी वेंदो आहे। सो इन जे करे जेकॾहिं तकलीफ़ पुराणी आहे त इन जी ट्रीटमेंट थींदी इन जो इलाजु थींदो। बाक़ी हिते हिन प्रोग्राम जे तवसुत सां अव्हांखे एतिरो ज़रूरु ॿुधाए सघंदासीं तव्हां जेकॾहिं असां वटि नथा पहुची सघो त तव्हां पंहिंजी केयर करे सघो था। मिसाल असां हिन वक़्तु बेसण बि घणो इस्तेमालु कंदा आहियूं। के दोस्त भाॼी गिह में खाईंदा आहिनि असां उन्हनि खे हज़ार दफ़ा झलियो आहे त भई भाॼी तेल में इस्तेमालु कयो थधो पाणी इस्तेमालु ज़्यादा न कयो तरियल शयूं इस्तेमालु न कयो डस्ट खां मिटीअ खां धुएं खां जंहिं शइ मां अव्हांखे एलर्जी आहे परफ्यूम मां त उहा शइ अव्हां जेको आहे सो इस्तेमालु न कयो ऐं मास्क जो इस्तेमालु कयो रोज़ाना राति जो पाणी गरम पाणी जी बाफ़ ॾियो ऐं चांवर इस्तेमालु न कयो अहिड़ी शयूं इस्तेमालु कयो राति जो कहवो ठाहे उन में अदरक विझी दारचीनी विझी बकारा मिर्च उनजो कहवो ठाहे उहो इस्तेमालु कयो उन सां बि अव्हांजे साह जूं नालियूं जेको आहे सो आज़ादु थी सघे थो बींग अ टेम्परेरी टाइम नॉट जेको आहे सो रेगुलरी। इन जे करे तव्हां आर्ज़ी तौर ते फ़ाइदो जेको आहे सो न वठो मुकमल तरीक़े सां फ़ाइदे वठण जे लाइ मुकमल ट्रीटमेंट जेको आहे सो तव्हां करायो। जी साईं।
0: जी साईं बिल्कुलु। डॉक्टर साहिबु कॉल जी तरफ़ हलंदासीं।
1: जी साईं।
0: अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام جی دا چھا پوچھنا چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
2: جی وا
0: چھا پوچھنا چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
2: ڈاکٹر صاحب مکے یہ سور تو پئے
0: کا تھے سور
2: اے مکے پاسے میں سور تو پئے
0: اچھا ہاں پاسے میں ہیٹھے یا متھے چیل کا
2: چیل میں سور تو پئے
0: اچھا کتھوں پہ گلاؤ
2: اسا رے رانی پور کا گلاؤ
0: ٹھیک ہے रेडियो ॿुधो मूंखे डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो।
1: जी सर बिल्कुलु तव्हांखे जेके पुराणो तकलीफ़ आहे त मुकमल इलाज करायो वरना फ़िलहालु जेकॾहिं आर्ज़ी तौर ते तकलीफ़ आहे त जीअं ज़ैतून जो तेल इन जे लाइ तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। अवां ज़ैतून जो तेल उनखे लॻाए सघो था राति जो खीरु गरम करे उनमें हेड विझी ऐं उहो पियो इनशाला ताला उन सां अव्हांखे काफ़ी जेको आहे सो फ़ाइदो पइजी ईंदो आहे। या वरी राति जे टाइम में अव्हां तेल सरिहं जो गरम करे उनमें हे सुंढ ऐं जाण विझी ऐं उनजो लूणु जेको आहे सो तव्हां कराए सघो था, उन सां बि काफ़ी जेको आहे लहणु इहो थींदो आहे जो माना हल्को हल्को जेको आहे सो तव्हां लॻाए छॾियो, उन सां जेको बि जिस्म में रीह जो वाई बादी जो या जेको ॿियो अंदरि ऐसा बि दर्द हूंदो आहे उहो बि उन सां जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदो आहे। लेकिन सिर्फ़ु जेकॾहिं आर्ज़ी वारी तकलीफ़ आहे, जेकॾहिं पुराणी तकलीफ़ आहे त उनजे लाइ ट्रीटमेंट थींदी जेकी दवाऊं अंदरि वञी पंहिंजो असरु ॾेखारनि।
0: जी प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में शामिलु थियण लाइ असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851।
1: इन सां गॾोगॾु दोस्तनि खे सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु नोट करे न हलंदासीं, असांजा हफ़्ते जा टे ॾींहं जुमो छंछरु आचरु चेकअप फीस फ्री रखियलु हूंदो आहे, जंहिं दोस्त खे जेकॾहिं को ज़रूरतमंद आहे त इन्हनि टिनि ॾींहंनि में अची करे ऐं उन मां फ़ाइदो वठी सघे। दवाऊं जेको असां मरीज़ वठी वठंदो आहे स्टोर तां, लेकिन बाक़िया चेकअप फीस जेकी डॉक्टर जी हूंदी आहे उहो जर्मन होम्योपैथिक इदारे जे तरफ़ां फ्री हूंदी आहे। अवां जुमो छंछरु आचरु इहो ज़रूरु यादि रख।
0: जी सर, ॿिया ॾींहं जीअं डॉक्टर साहिबु हर अरबा खमीस जुमे छंछरु आचरु ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पटोर पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। डॉक्टर साहब, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कन गलो, पुराणो नज़लो, निछू मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, दिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो इलाजु कयो वञे थो। हलूं था हिक ॿी कॉल जी तरफ़। अस्सलामु अलैकुम जी, अदा केरु ऐं किथां खां? अदा पहिरियां त रेडियो सेट बंदि कयो पंहिंजो। जी अदा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
2: डॉक्टर साहिब खां इहो पुछण था चाहियूं त घर वारी आहे मुंहिंजी, हुनजी तकरीबन 40 साल उमिरि आहे।
0: जी जी
2: साईं, हुनखे जेल में सूरु आहे तकरीबन 8 ॾींहं थी विया आहिनि, हिकिड़ी जंघ में सूरु पए थो।
0: अच्छा, ठीकु आहे, किथां पिया ॻाल्हायो सर?
2: जी साईं, स्विगीअ खां पिया ॻाल्हायूं।
0: अच्छा, ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, मूंखे डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो।
1: दोस्त खे ॿुधाईंदासीं हुनखे जेको आहे सो घर ॾे तकलीफ़ आहे अदड़ी खे, त इहो जेको हुन तरीक़े सां हुते ॿुधायो त रग जो सूरु, कुन रग जो सूरु हूंदो आहे, शैटिका पेन बि हूंदो आहे, त उहा तकलीफ़ थी सघे थी। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ आहे उनजो मुकमल इलाजु होम्योपैथिक में मौजूदु आहे, सो बहितरु अदे खे इहो ई चवंदासीं त

मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। जीअं डॉक्टर साहब वक़्तु गुज़रंदे देरि न लॻंदी ऐं असांजे अॼोके प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजो पुॼाणी त पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: मैं 133 रन से ते ढेर थी वही सऊद शकील 43 मोहम्मद अब्बास 21 ऐं रज़ा उल्लाह 11 रन ठाहे क़ौमी टीम जी कंहिं हद ताईं इज़त बचाइण जी कोशिश कई। बाक़ी रांदीगर डबल फिगर में बि दाख़िल न थी सघिया। प्रदुकी मैच में विकेट कीपर गाज़ी होरी, फास्ट बॉलर रज़ा उल्लाह ऐं इमरान रंधावा डेब्यू कयो। ग्रीन कैप्स के पहिरीं मैच में इनिंग्स में 103 रन, टी मैच में 194 रन तां शिकस्त मिली हुई।
4: Introduce the government bill number.
5: यही तो मीजान है जो आपको देता है 5 प्रो

0: Motion to the House. Those who are for the motion may say aye. And those against it may say no. I rave it. And the motion is carried.
1: मेयर ऐं चेयरमैन मुदो ख़तम थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौरु कमु कंदा। डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन लाॻापियल काउंसिल जा कन्वीनर हूंदा। मकानी चूंडनि जो अमल काउंसिल जो मुदो मुकल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वेंदो। चूंडूं न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौरु कमु जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतमादी रीते 2-3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी। कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो। सिंध हुकूमत लोगत बॉडीज एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। पार्लियामानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सूमरो पारां पेश कयल बिल ते गौर लाइ 12 रुकनी कमेटी क़ाइम। सूबाई वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार जी तजवीज़ ते जोड़ियल ख़ुसूसी कमेटी 1 हफ़्ते अंदरि रिपोर्ट सतह ते मसालती फोरम क़ाइम करण जी तजवीज़। बिल जे मसवदे मूजिब मसालती फोरम बिरादरी जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में रहंदो।
2: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी फिर पगारो जैसा समझूंगा। अगर पगारो कुछ नहीं बोलगा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI।
1: सूबन बाबा तीर पगारे जो किरदार

हाकिम वारो आहे। कंहिं जी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे। आइन रेफरेंडम बाबति वाज़ह आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े चयो आहे त आमरण जो दौर गुज़री वियो, ॿिनि सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे। जंहिंखे सूपनि जो शौक़ु आहे, इलेक्शन विड़े ठाहे।

0: कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासा इंकलाब पारां अमरीकी बेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी परे वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी बेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी अॾपण ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। आबला हुर्मुस में बि 10 खां वधीक भेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिबि ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रज़क में क़ाइम अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जे ॿिनि डिस्टायरेज़र खे बि निशानो बणायो वियो। पासदार इंक़लाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी तस्दीक कई वई। ही अस्पताल आहे या मज़ाक? HIV पकड़जी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पीएम सिसाने ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पीएम इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मोतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अव्हां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी। ऐं मलवली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर नाहे? केतिरनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे?
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109,
2: 0300-310-5109। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320-1800-003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8743।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन नजरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
1: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

मिल्क राइस ब्यूटी शोज़ कर रहा हूँ है आबिद चौहान अमा मुदीरा जी FM 94 मिल्क राइस ब्यूटी शो है जी FM 94 मेरा पुरजे बुधंदरन सबनी प्रीम प्यारन दिल बर दिल रुबा दोस्तन के वेलकम बलिकार खुशामदी जी आनु वशाद के आए पखर रागले

उमित सभी जे क्या पिरी प्यारा दिलरुबा दिलबर दोस्त पहजी मौज मस्तिन ऐ पहजे बचड़न सा गड खुश शादो आबाद हुंदा रब पाक अवां के पहजे बचन सा गड हमेशा शादो आबाद रखे।

जी जनाब, तो काफी लोग जो है कि मालूम करने की कोशिश करते हैं कि सरप्राइज क्या है, सरप्राइज कहा ही उसे जाता है जो अचानक से दिया जाए। बिल्कुल सरप्राइज आपको खुश करने वाली चीज ही होगी, डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है लेकिन हैप्पी हैप्पी होंगे। ऐसा सरप्राइज नहीं होगा कि आपको शॉक कर दे बल्कि आपको खुश कर दे।

जी जनाब, तो आप करेंगे एक खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक एंजॉय, और तब तक जो है कि आपको हम अपना लाइव कॉलिंग नंबर बता दें, ताकि ट्रैक के बाद आके आपको सरप्राइज भी देंगे, आप से लाइव कॉल पे हम बात भी करेंगे और आज की रिडल भी बताएंगे और सरप्राइज एज वेल। हमने एज शुरू में ही बात कर दी कि सरप्राइज भी है, तो सरप्राइज भी बहुत प्यारा सा है, अच्छा सा है। तो हमारा लाइव कॉलिंग नंबर नोट कर लें, हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667। और डेफिनेटली आप इसी नंबर पे हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आप अपना प्यार का प्यार भरा पैगाम भी शामिल कर सकते हैं प्रोग्राम में, उसके साथ साथ प्रोडक्ट के हवाले से फीडबैक भी दे सकते हैं, और जो है कि रिडल के हवाले से आप रिप्लाई भी टेक्स्ट की सूरत में भी दे सकते हैं। लेकिन लाइव कॉल करने वालों के लिए आज ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, टेक्स्ट को भी हो सकता है हम शामिल कर देंगे उस सरप्राइज में।

खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले, हम दावा नहीं दलील देते हैं। आप हमें दलील का मौका दें, हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद हमें फीडबैक से, अपने फीडबैक से आगाह करें। हमें फीडबैक से आगाह करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03009319667 और उसके अलावा जो है कि हमारी हेल्पलाइन है जिसपे आप प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी करवा सकते हैं और अपने फीडबैक से भी आगाह कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03003105109। आप इस पे कॉल करके मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से बात कर सकते हैं।

जी तो मिल्क राइस की प्रोडक्ट्स मैरापुर के अंदर इन जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी। खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। आपके बेहद जो है कि इसरार और प्यार मोहब्बत की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स आज इतने सारे जो है कि जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल है। और अगर मज़ीद आप अवेलेबिलिटी करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन नंबर है 0300-310-5109। इस पे कॉल करके आपने मलिक जफर इकबाल और एम सिद्दीक साहब से बात करके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवानी है। इवन प्रोडक्ट के हवाले से फीडबैक भी दे सकते हैं।

जी, तो सरप्राइज के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा जो है कि हमारी आज की रिडल भी, और रिडल के साथ जुड़ा हुआ है सरप्राइज, तो उसके लिए आपको हमें टेक्स्ट और कॉल करने होंगे। तो कॉलिंग नंबर वंस अगेन आप नोट कर लें, 0300-931-9667। आज की रिडल है जी, तो आप रेडी हैं? रिडल है बहुत ही पेचीदा कि वो कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है।

जी दोस्तों, वह कड़ी शे आए जेका पानी पीण से ही मरी वेंदी है। अजोकी गुजारत या है वह कड़ी शे आए जेका पानी पीण से ही मरी वेंदी है।

प्रोग्राम खे लॻभॻि 15 खां 18 मिंट थी चुका आहिनि। मूंखे लॻे थो हाणे सरप्राइज़ जी वारी आहे, छाकाणि त हुन खां पोइ ई लॻे थो अव्हांजी कॉलिंग ऐं टेक्स्ट असां वटि मौसूलु थींदा। ऐं सरप्राइज़ आहे अॼु इनाम जी सूरत में। जी तो आज का सरप्राइज है इनाम की सूरत में, तो आधा सरप्राइज तो हमने जो है कि डिस्क्लोज कर दिया, मतलब हमने आधा सरप्राइज आप लोगों को बता दिया कि सरप्राइज इनाम है, किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, उसकी क्राइटेरिया बता देते हैं। आज के प्रोग्राम की जो रिडल है, जो रिडल बताएगा लाइव कॉल के थ्रू और SMS के थ्रू हो सकता है, अगर मैक्सिमम ज्यादा टेक्स्ट और कॉल्स आ गई तो हम उसे ड्रॉ के सूरत में भी कर सकते हैं, और अगर लिमिटेड रहे तो हम डायरेक्टली उन 2 से 3 जो है कि खुश नसीबों को वो हम इनाम दे सकते हैं। अब उसके लिए आपको जो है कि मैक्सिमम कॉल्स करनी पड़ेंगी, तो डायल करें, फोन उठाएं 03-9319-667 और उस पर आप हमें रिडल का रिप्लाई देंगे, और जिसका राइट आंसर होगा एंड में जो है कि हम नाम भी अनाउंस करेंगे उन खुश नसीबों के, हो सकता है ड्रॉ के थ्रू हो सकता है डायरेक्टली वो इनाम के हकदार हो जाएं। जी इनाम से सबको गर्ज होता है कि बस इनाम हो, लेकिन ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की कि वो इनाम डेफिनेटली कंपनी के थ्रू से है, यानी कि मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ से है, और डेफिनेटली उनकी तरफ से है, तो मलिक जफर इकबाल साहब की तरफ से है। तो मलिक जफर इकबाल साहब के लिए जो है कि आप दिली दिल में दुआएं भी देंगे और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, और जो है कि उनसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल होगा उन लोगों को भी जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट नहीं लिए। और राइट आंसर आज इस रिडल का देकर मलिक इकबाल साहब से मुलाकात करेंगे उनके जनरल स्टोर पे, खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर पे, अदरवाइज जिनको स्टोर नहीं देखा हुआ तो उन्होंने कॉल करनी होगी हेल्पलाइन पे 03-3105-109। लेकिन उससे पहले हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि कौन कौन खुश नसीब इनाम के हकदार करार पाए हैं और उनका क्या हमारे पास है। हम अपने पेज पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल ऐप पे उनकी तस्वीर भी लगा सकते हैं, और विदाउट तस्वीर भी उनकी कंफर्मेशन के लिए उनका CNIC या उनकी जो है कि मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करके मलिक जफर इकबाल साहब की तरफ हम उन्हें मूव करेंगे और वो उन्हें देंगे वहाँ पे गिफ्ट। तो है ना सरप्राइज़।

जी, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक और खूबसूरत म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, और तब तक आप रिडल का रिप्लाई सोचें और सोचने के बाद फोन कॉल उठाएं, इससे पहले कि लाइन जो है कि बिल्कुल जैम हो जाए। तो पहले आइए और पहले पाइए, आज की रिडल है, रिडल दोबारा मैं अगेन बताने जा रहा हूँ, वो कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है, वह कड़ी शे है जिसका पानी पीते ही मरी वी है। अवा के बुधाने लाए असा के लाइव कॉल करनी पौधी, असो लाइव कॉलिंग नंबर है 0300-931-966, हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300-931-967।

अच्छा जी, तो सॉन्ग से पहले हमने आपको एक रिडल दी थी और वो रिडल है कि वो कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। गुजारत आए वह कड़ी शे है जो पानी पीते ही मरी वेंदी है। आज जबरदस्त इंटरेस्टिंग गाल यह है तो यह गुजारत भजन था, मतलब असा लाइव कॉल करे या टेक्स्ट वसीले शामिल थे में प्रोग्राम में भजन से अवा हकदार थोड़े इनाम का जो इनाम अवा के वो ी मलिक जफर इकबाल साहब उ असि प्रोडक्ट होंगी डेफिनेटली उन प्रोडक्ट की जहाँ अवा के इस्तेमाल में भी अवा के इस्तफादो फायदो भी थी शे अवा के इनाम तौर मिली फायदेमंद भी अवे होंगी।

असां वधंदासीं, प्रोग्राम में शामिल कंदासीं हिकु ख़ूबसूरत ट्रैक जेको अवां सभिनी सां गॾो गॾु डेडिकेट करण सां गॾो गॾु स्पेशली जेको आहे त हीअ मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ साहिबु ऐं जी एफ एम 94 मैरापुर जे सभिनी ॿुधंदड़नि जे नाव कजे थो ख़ूबसूरत म्यूज़िकल ट्रैक सिंधा मिठी तेड़ा माण्हू मिठा।

जी त जेतिरियूं कॉल्स ओतिरा विनिंग्स या अपॉर्चुनिटीज़ जा मौक़ा वधीक अजोकी जेका रिडल आहे उहा आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका पाणी पीअंदे ई मरी वेंदी आहे ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाणी पीते ई मर जाती है एना सिंपल या पेचीदा जो भी है जैसा भी है दिमाग लड़ाएं रिप्लाई दें और जीतें मिल्क।

इस ब्यूटी की प्रोडक्ट, वो आपको प्रोडक्ट हम एंड में बताएंगे कि आपने जो है कि जो खुश नसीब जीत पाएंगे वो जाके मौसूल करेंगे मलिक जफर इकबाल साहब या आयम सिद्दीक साहब से, मलिक जफर इकबाल साहब से वो रिसीव करेंगे, तो वो खुशी जनरल स्टोर मैरापुर पे अवेलेबल होते हैं और वहां पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम उनको भी डिटेल दे देंगे कि जो ये रिडल बूझ पाया है तो उन्हें इनाम मिलेगा, तो उसकी जो है कि डिटेल थोड़ी सी हम शेयर कर देंगे, उसको उनका गिफ्ट मिल जाएगा। तो उठाएं फोन और लगाएं हमें कॉल 0300 931 9667, इस पे बता दें कि वो कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है।

प्रोग्राम अपनी एंडिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है मुझे और आप सब लोगों को भी, लेकिन अब तक हमें कोई लाइव कॉल मौसूल नहीं हुई। अलबत्ता टेक्स्ट हम लास्ट में शामिल कर देंगे और अनाउंसमेंट भी कर देंगे, लेकिन जो कॉल करेगा हो सकता है उसके लिए जो है कि गिफ्ट समथिंग चेंज हो, अदरवाइज जो है कि ड्रॉ के थ्रू हम जो भी जितने भी लकी हैं विनर उनको उनका गिफ्ट मिल जाएगा। जी तो शवन अली मीरा अली की आवाज में बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ट्रैक शामिल कंदा से आए, वो डेडिकेट कंदा से मलिक जफर इकबाल एम सिद्दीक जे तरफा जी एफ एम 94 मेहरापुर जे तमाम बुधंदड़न आए स्पेशली जो द मिल्क राइस ब्यूटी शो जे बुधंदड़न जे नाव कंदा से तबुगत जी अचो त ई प्यारो ट्रैक एंजॉय क्यों

वेलकम बैक मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेरा। कहड़े साबुण सा मुंह मिठा धोई दो आ पियो बल बजया जण बर दो आ मुंह धोई करे जो ई दो आ डेफिनेटली कहड़े साबुण सा वरी कहड़े सा मिल्क राइस ब्यूटी सोप सा खूबसूरती जो नजर आए भरोसा जो दिल जीत ले मिल्क राइस ब्यूटी सोप सा मुंह धोई करे जने महबूब इंदो या फिर प्यारो इंदो को दोस्त इंदो संगत असा जी इंदी तो वो इंतहाई खूबसूरत नजर इंदी डेफिनेटली। जी दोस्तों प्रोग्राम जो वक्त लगभग पिछाड़ी ते पुजाणी ते पहुतो आए सो असा कोशिश कंदासे अवाजी कॉल का शामिल कजे अवाजा टैक्स जेके शामिल थे आनू लास्ट में असा सब पढ़ी कोन सकदासे पर यो आहे ता असा अनाउंसमेंट जो की रिडल जी करे चरिंदासे अजा भी जे करे इन 8 मिनटन में जेके दोस्त लाइव कॉल करे वो खुश नसीब शामिल थन आई विदाउट एनी लकी ड्रॉ जे करे वो इनाम माने सकन ती असा जो अजो को जो को सवाल आहे या गुजारत आहे या जो पहली है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है यह बुधाने लाए अवां के असा जे लाइव कॉलिंग नंबर ते कॉल करनी पौंदी 0300 931 9667।

मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जेके प्रोडक्ट्स शामिल आहिनि उन्हनि में मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एग्नी क्रीम ऐं मिल्क राइस वाइटमिन सी शामिल आहिनि। ऐं इहे तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते स्टॉक अवेलेबल कराइण चाहियो था त स्टॉक जी अवेलेबिलिटी लाइ अव्हांखे असांजी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करणी पवंदी। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 310 5।

इन ते कॉल करे अवां के मलिक जफर इकबाल ऐं एम सिद्दीक साहब सां ॻाल्हि करणी पवंदी। खूबसूरती जो नज़र आए भरोसा जो दिल जीत ले हम दावा नहीं दलील देते हैं।

दोस्तों मूं वधि खां वधि कोशिश कई लाइव कॉल्स शामिल कजनि उन वसीले अवां जो इहो रिप्लाई ॿुधजे पर टैक्स जेके बि जेतिरा बि शामिल थिया आहिनि त पोइ लॻभॻि वक़्तु अची चुको आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं अहिड़ी ॻाल्हि न आहे असां वरी मिलंदासीं सुभाणे मिलंदासीं बस ज़िंदगी बख़ैर सिहत हुजे सलामती हुजे त पोइ मुलाक़ातूं पयूं थींदियूं रहंदियूं महबूबनि सां जी त पोइ वक़्तु अची वियो आहे विछोड़े जो वक़्तु अची वियो आहे मोकिलाणीअ जो मोकिलाणी आहे सुभाणे ताईं ऐं सुभाणे वरी असां साॻे टाइम ते अव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं नई रिडल नई गुज़ारत सां ऐं

वो चीज है प्यास, कि पानी पीते ही वो चीज मर जाती है। राइट आंसर ॾिनो आहे त पोइ उन्हनि जो कुरानदाज़ी या उन्हनि जो जेको आहे त डायरेक्टली उन्हनि खे उन्हनि जो इनाम मौसूल थी वेंदो। असां डिटेल शेयर कंदासीं। मलिक ज़फ़र

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज

0: It's 9 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: The motion to the house, those who are for the motion may say aye, and those against it may say no. I rave it, and the motion is carried.
4: मेयर ऐं चेयरमैन मुतो ख़त्म थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौरु कमु कंदा। डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन लाॻापियल काउंसिल जा कन्वीनर हूंदा। मकानी चूंडनि जो अमल काउंसिल जो मुतो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वेंदो। चूंडूं न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौरु कमु जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतमादी रिट बाबा खे 3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी। कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो। सिंध हुकूमत
5: लाइव लोकेशन शेयर करें ऑटोमेटिकली विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बाय एडिंग
4: बिल ते गौर लाइ 12 रुकनी कमेटी क़ाइम। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन अंजार जी तजवीज़ ते जोड़ियल ख़ुसूसी कमेटी हिकु हफ़्ते अंदरि रिपोर्ट पेश कंदी। तरमीमी बिल में यूनियन म्यूनिसिपल ऐं टाउन सतह ते मसालती फोरम क़ाइम करण जी तजवीज़। बिल जे मसवदे मूजिब मसालती फोरम बिरादरी जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में रहंदो।
6: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी फिर पगारो जैसा समझूंगा। अगर पगारो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI।
4: सूबनि बाबति पीर पघारे जो किरदार बि MQM वारो आहे। कंहिं जी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे आइन रेफरेंडम बाबति वाज़े आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त आमरनि जो दौर गुज़री वियो, ॿिनि सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे। जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे।

ईरान ऐं अमरीका विच में चिकताण वधी वई। अमरीका पारां कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासदारनि इनकलाब पारां अमरीकी बेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी पढ़ी वज़ीर मार्को रूबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी बेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी हदफंड ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अडनि खे निशानो बणायो। अबना हुर्मुस में भी 10 खां वधीक बेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिबि ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल अरज़क में क़ाइम अमरीकी अडे खे निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जे ॿिनि डिज़ास्टराइज खे भी निशानो बणायो वियो। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अडे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी तसदीक कई वई। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठि फाइनेंस प्लान 2026-28 बाबति इजलास। पंहिंजो घर स्कीम ज़राअत ऐं SMS में

तरक्की लाइ फाइनेंसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ आर्यन जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो आहे त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तर्जी आहे। हीउ इस्पताल आहे या मज़ाक? एचआईवी पकड़िजी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि एफआईआर छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स थाने ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मुअतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अव्हां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी? मेमल वली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर नाहे? केतनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त हिन मुल्क में न जज़ा आहे न सज़ा ऐं न ई को निज़ाम। जेकॾहिं मां इस्लामाबाद जा ॿ इस्पताल बि संभाले नथा सघो त उहा ॿुॾी मरण जी ॻाल्हि आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस खारान ऐं वाशक ज़िलनि में गुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 11 दहशतगर्द मारिजी विया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंदि करण जी कोशिश कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया विया। वाशक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾे वठि दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। सदर वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी घर वज़ीर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म इफ़्तिखार गिलानी जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ जी इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो मनसब संभालण ते मुबारकबाद। मुलाक़ात में आज़ाद कश्मीर जे अमन तरक़ी ऐं जारी फलाही मनसूबनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे अवाम जी भलाई लाइ भरपूर सहकार कंदी रहंदी। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त ख़िते जी तरक़ी ऐं अवाम जी भलाई लाइ सभई सलाहियतूं कुतुब आंदियूं वेंदियूं।

0: इस्लामाबाद में रावलडंड के किनारे कायम पाकिस्तान नेवी फॉरम्स नेवी सेलिंग क्लब के गैर कानूनी करार दियण वारो फैसलो कल अदम करार। नेवी सेलिंग क्लब की इमारत जायण बाबत फैसलो पिण कल अदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक सफे से बदल मुख्तसर फैसलो जारी कदे अदालत अगूणे नेवी चीफ जफर महमूद अब्बासी खिलाफ मिसकंडक्ट फौजदारी कार्रवाई करण बाबत फैसलो पिण खत्म कर छो। साल 2022 में अगूणे चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला जी सिंगल बेंच पारा क्लब के गैर कानूनी करार दिनो हो। जस्टिस इनाम
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारू जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014514656 तौकीर अहमद 03006।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

चंग ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ चंद पे महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुर्का विखरल दिल में आबे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंद ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ।

GFM नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी प्रेम प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि खे प्रोग्राम में वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

नब्ज़ तपासे वेज वराणियो, नब्ज़ तपासे वेज वराणियो, हाणे छोरा प्यार छॾे ॾे। नब्ज़ तपासे वेज वराणियो, हाणे छोरा प्यार छॾे ॾे। जीअण जग में चाहीं थो जे, दोस्त मिठो दिलदार छॾे ॾे।

कोयल वांगे कुके एडो बाबी है ज्या बोली छतो, कोयल वांगे कुके एडो बाबी है ज्या बोली छतो। हर वण ते वासिंग थी वेठो, हर वण ते वासिंग थी वेठो, डाहो थी दिस डार छड़े दे, हाणे छोरा प्यार छड़े दे। सुख जे चाहीं थो तू सरता, वैरागन जी वाट वठी हल। सुख जे चाहीं थो तू सरता, वैरागन जी वाट वठी हल। भूराई के भाकुर पाए, सियाणप जो संसार छड़े दे। कुआरी वनवाह में वेठल, उनके पकड़े आयो आछा। कुआरी वनवाह में वेठल, उनके पकड़े आयो आछा। रात मछन में मातम हो पुट, सियाणो थी बस यार छड़े दे। रात मछन में मातम हो, रात मछन में मातम हो पुट, सियाणो थी बस यार छड़े दे, हाणे छोरा प्यार छड़े दे। गोलन जी का गाल अप्यारा, सीनो हरदम हाजिर आहे। गोलन जी का गाल अप्यारा, सीनो हरदम हाजिर आहे। यार जो आहीं सामहो अचनी, यार जे आहीं सामहो अचनी, पुठ जे पोयां वार छड़े दे, सियाणो थी प्यार छड़े दे। नब्ज तपासे वेज वराण्यो, हाणे छोरा प्यार छड़े दे। जीअण जग में चाहीं थो जे, दोस्त मिठो दिलदार छड़े दे। खूबसूरत शायरी प्यारे प्यारी दिलरुबा दिलबर दोस्त सज्जाद महर जी प्रोग्राम में शामिल कई से। इन सा गड खुड़ सारियों अजा शायरियों में शामिल कंदा से। म्यूजिक ट्रैक भी हुंदा, अवां जो लाइव कॉल्स भी हुंदियूं। असा प्रोग्राम जी शुरुआत में अवां सा गाल बोल कंदा हूं, ए 15 खां 20 मिंटन में आफ्टर ब्रेक में असा अवां जी कॉलिंग जो अटेंड करण जो सिलसिलो शुरू थींदो आहे। अवां जो कॉल्स कंटिन्यूसली असां खे अचनि पियूं, बेहद इंतज़ार रहंदो आहे अवां जी कॉल्स जो। पर जेकॾहिं अवां सां का ॻाल्हि ॿोल न थींदी, का दिलि जी ॻाल्हि न थींदी, सिर्फ़ु जेको आहे त फ़ोन कॉल अटेंड थींदी, त ॿिया सभई दोस्त जेका त प्रोग्राम जे उन पैटर्न उन मज़े खां रहिजी वेंदा।

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल संगत आऊं है आबिद चौहान आए आवां बुधी रहा हो GAFM नेटवर्क दोस्तों हियर वक्त थियो है एकड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो वरी वरंदा से वापस बुधंदा रहो GAFM नेटवर्क

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्ने क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-5109
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध ऐं वठी अच
1: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालन खां आज़मायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन खां नालो वठी तलब कंदा
2: हा भाग भरी चंगो थो लगे मां हाणे ई थो वठी अचां
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर
5: मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 03013992836
9: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94

कॉल अटेंड न करे सकिया हूं या नथी सकी है अनफॉर्चुनेटली कॉल शामिल कंदा से आवा जो मोहब्बत हूं आवा मुसलसल कंटीन्यूअसली असा के कॉल कर रहा हो कॉलिंग जो सिलसिलो कंटिन्यू रहंदो असा जो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488 आवा असा के टेक्स्ट मैसेज पिन करे सको था असा के एसएमएस करण लाई 888 ते अमा पहजो मैसेज करे सको था आए असा जी फेसबुक ते जेका पोस्ट शेयर थे लाए उन ते पिन कमेंट करे सको था प्रोग्राम जे हवाले सा फीडबैक बदई सको था।

मुसविर चौहान जो इंतहाई खूबसूरत नज़म शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। उनवान आहे महबूब डिक्टेटर। चरीअ सां चाह हुआ मुंहिंजो, चरी वी साह हुआ मुंहिंजो। चरीअ सां चाह हुआ मुंहिंजो, चरी वी साह हुआ मुंहिंजो। चरीअ खे को त सम्झाए, चरीअ में साह हुआ मुंहिंजो। करे हर रोज़ थी जेड़ा, कॾहिं कहिड़ा कॾहिं कहिड़ा, ॿुधायां मां भला कहिड़ा। ज़िदी कंहिं ॿार अड़े जहिड़ी, अचे थी होड ते जंहिं पल। सफ़ा अहसास खां ख़ाली, रहम ऐं क्यास खां ख़ाली। लॻे फिरौन थी तंहिं पल, लॻे ई हू बहू जहिड़ी। ज़ियाउल हक़ ऐं हिटलर, मुंहिंजी महबूब डिक्टेटर, मुंहिंजी महबूब डिक्टेटर। सिंधुअ जे छोलड़िन जहिड़ी, मिठीअ जे मोरड़िन जहिड़ी। भिटाई जे सुरन वर्गी, मधुर संगीत ऐं सरगम। दंबूरो तार आमूलै, समूरे साह खां प्यारी। रुए अरवाह खां प्यारी, सॼो संसार आमूलै। अलाहु लाडली आहे, मखण जी चाडड़ी आहे। खिले त फूल महकाए, रोए त रात जागाए। खिले त फूल महकाए, रोए त रात जागाए। मिले त मोर रक्षा थियनि, छिजे त साह सहकाए। रुसण कंहिंखां सिखी आहे, कुहण कंहिंखां सिखी आहे। इहा मूंखे ख़बर नाहे। ठहे थी हू हक़ीक़त में, ठहे थी ख़्वाब में अक्सर। ड्रहे थी हू हक़ीक़त में, ठहे थी ख़्वाब में अक्सर। नकी थी प्यार सां समझे, सही थी कोन को, सहे थी कोन को दड़को। ठके ठोके ऐं खड़काए, वठे वहवार थी पंहिंजो। अड़ीअ ते बस अड़ी आहे, मिज़ाजन चिड़चिड़ी आहे। हू उबती खोपड़ी आहे, सड़े थी बर्फ़बारीअ में। कढ़े थी सर्द सियारे में, ठरे थी आग भड़काए। दिलनि जा चैन तड़पाए, थकावट ॾींहुं सारे जी। बग़ावत ओड़े पाड़े जी, सुबुह ऐं शाम धारे जो। वेही पो वांद काईअ में, चंडी थी छोहड़ा सा, छंडे थी छोहड़ा सारा। अंधा ऐं के मंडा काणा, हणे इल्ज़ाम थी मूं ते। चरीअ खे को त सम्झाए, ईअं मूंखे न तड़पाए। संदसि में साह हुआ मुंहिंजो, चरीवे साह हुआ मुंहिंजो।

मुले भगवान जहड़ी आ रहीमो राम जहड़ी आ, मुले भगवान जहड़ी आ रहीमो राम जहड़ी आ, मुले काबो आहे किबलो नकी मुखा जुदा आहे, मुझी महबूब डिक्टेटर मुझे लय खुद खुदा आहे, खुदा आखिर खुदा आहे, खुदा के केर समझाए, खुदा के केर समझाए।

0: जी वो केडी ने बेचई या मुखे हेखल छरे वई या ए बिल्कुल आशिक मजबूर हुंदो है जने महबूब पंजी मनमानी ते अची वने तो हुआ मंथ भी कंदो आ दड़का भी दिंदो आ दाब भी दिंदो आ नेट इहो इजहार भी कंदो आ तो हु केडी ने बेचई या मुखे हेखल छरे वई या प्रोग्राम में एडी कॉल शामिल कंदा से कॉलर असा सा गड लाइन ते मौजूद आहन वालेकुम सलाम केर साईं के था का
1: भाई यास्मीन बात कर रही हूं मीरपुर खास से
0: सॉरी
1: मीरपुर खास से बात कर रही हूं यास्मीन
0: मीरपुर खास से वेलकम बलीगार खुशामदीद जियान वशात के और पखर अगले प्रोग्राम दिल की बात कैसा लग रहा है
1: आपका शो सुनती हूं मैं रोज
0: बड़ी मेहरबानी जरा नवाजी शुक्रिया
1: तो भाई 1 घंटे से तो सॉन्ग प्ले हो रहे हैं उर्दू सॉन्ग
0: बिल्कुल उर्दू चलते हैं सॉन्ग आप सुन रही होती हैं तो
1: मतलब आप मुखातिब नहीं हुए सॉन्ग आ रहे थे
0: सॉरी मैं समझा नहीं
1: मैंने कहा सॉन्ग आ रहे थे आप मुखातिब 9:45 से हुए
0: नहीं ऐसा नहीं है 9:45 से पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 9:15 पे और 9:15 पे हमने
1: तो वो तो मैं सुन रही हूँ भाई मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही थी
0: अच्छा हाँ तो सॉन्ग तो प्ले था ना डेफिनेटली
1: सॉन्ग
0: जी जी
1: और
0: जी, जी.
1: भाई आप नाहिद अख्तर का सॉन्ग प्ले कीजिएगा
0: किसका
1: शबे गम
0: नाहिद अख्तर का
1: जी हाँ
0: शबे गम और कुछ अपने दिल की बात कहना चाहेंगी किसी को पैगाम
1: एफ एम आपकी आवाज बहुत अच्छी है आप उर्दू की शायरी सुनाया करें
0: बिल्कुल उर्दू की शायरी शामिल करेंगे आपकी
1: हिंदी भी समझ में आती है
0: बिल्कुल बिल्कुल दोनों सुनाएंगे
1: अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे
0: पैगाम किसी को कुछ देना चाहेंगी
1: बस मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम
0: बड़ी मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू
1: अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज

जी तो दोस्तों कॉल्स का सिलसिला भी कंटिन्यू जारी रहेगा और आपकी फरमाइशें भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेल्स की तो कॉल ज्यादातर हमारे प्रोग्राम में 99% मेल्स की कॉल आती है, कोई आधा 1% जो है कि किसी फीमेल की सडनली कॉल आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी फरमाइश पूरी ना की जाए। तो हम एंजॉय करेंगे सभी मिल के नाइद अख्तर की खूबसूरत आवाज में, शब गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई।

0: It's 10 p.m.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हों सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश कर सको। पार्लियामानी सेक्रेटरी कासिम सराज सूमरो पारा पेश कल बिल ते गौर लाए 12 रुकनी कमेटी कायम। सूबाई वजीर जियालसन अंजार की तजवीज से जुड़ियल खसूसी कमेटी एक हफ्ते अंदर रिपोर्ट पेश कंदी। तरमीमी बिल में यूनियन म्यूनसिपल ए टाउन सतह से मसालती फोरम कायम करने की तजवीज। बिल के मसवदे मूजिब मसालती फोरम बिरादरी के तकरार को हल गोल्ड ए मकामी SHO UC चेयरमैन से राबते में रहो।
3: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी फिर पगारो जैसा समझूंगा। अगर पगारो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI।
2: सूबन बाबत पीर पगारे जो किरदार भी MQM वारो आहे। कंहिं जी ख्वाहिश या मर्जी ते रेफरेंडम नथो थिए सघे। आइन री रेफरेंडम बाबत वाज़े आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त आमरण जो दौर गुज़री वियो। 2 सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे जंहिंखे सूबन जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे।

ईरान ऐं अमरीका विच में चिकताण वधी वई। अमरीका पारां कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोस बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिब ईरानी ऑयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासारनि इनकलाब पारां अमरीकी वेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी वेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी हथफनि ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। अबनाहमुस में बि 10 खां वधीक

हीअ अस्पताल आहे या मज़ाक? एच आई वी पकड़जी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि एफ आई आर छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जी इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स साने ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मुअतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कारवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अव्हां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे।

0: थी एमल वली खान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाक़िए जी ख़बर न आहे की तनि केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।